शुभ सवेरा, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का, सुबह सवेरे जाग कर हमारे साथ चलने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज सोमवार है। विक्रम संवत 2083 के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि और शक संवत 1948 के आश्विन मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 12 अक्टूबर सन 2026। इस समय 7:04 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय है कि आपको हम आज के कार्यक्रमों की जानकारी दें, लेकिन उसके पहले आज के दिन की बात करते हैं, 12 अक्टूबर की बात करते हैं। श्रोताओं, शरीर की सहज गति ही जीवन की सहजता है। सुबह बिस्तर से उठना, अपने कदमों से मंजिल तक पहुंचना, सीढ़ियां चढ़ना, हाथ बढ़ाकर किसी अपने का हाथ थाम लेना, ये सब हमारे जीवन के इतने सामान्य हिस्से हैं कि हम कभी इनके महत्व पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जब घुटनों में दर्द हो, उंगलियों के जोड़ अकड़ने लगें या चलने फिरने में परेशानी होने लगे, तब एहसास होता है कि शरीर की जो गतिशीलता है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसकी ओर हमारा ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। इसी गतिशीलता को बनाए रखने और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 12 अक्टूबर यानी आज के दिन आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। आर्थराइटिस को सामान्य भाषा में गठिया कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और उनकी गतिविधियों में कठिनाई हो सकती है और इसके कई प्रकार भी होते हैं। आखिर आर्थराइटिस है क्या? हमारे शरीर में जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ जोड़ बनता है। इन जोड़ों की सहायता से हम चलते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं और अनेक तरह के काम कर पाते हैं। जब जोड़ों में सूजन या अन्य बदलावों के कारण दर्द और अकड़न होने लगती है तो इसे आर्थराइटिस का संकेत माना जाता है। श्रोताओं, आर्थराइटिस का एक प्रमुख कारण है ऑस्टियो आर्थराइटिस, उसका एक प्रकार है जिससे जोड़ के भीतर मौजूद उपस्थित यानी कार्टिलेज धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगता है। इससे विशेष रूप से घुटनों में, कूल्हों में, हाथों के जोड़ों में दर्द या गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। बढ़ती उम्र इसका एक कारक है, लेकिन ये केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं है, आजकल कम उम्र में भी ये तकलीफ लोगों को हो रही है। अब इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने पर जोड़ों में अधिक अकड़न महसूस हो, घुटनों में दर्द के कारण सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई हो, हाथों की उंगलियों में सूजन आने लगे, लंबे समय तक बैठने के बाद चलने में परेशानी हो, तो आप समझिए कि आपको थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जीवन शैली से हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं? आर्थराइटिस के सभी प्रकारों को पूरी तरह से रोक पाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ आदतें जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहली आदत है नियमित शारीरिक गतिविधि, टहलना, तैरना और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप हल्के व्यायाम करना, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, शरीर का जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए वज़न को हम बनाकर रखें, संतुलित आहार लें, नियमित गतिविधि करें ताकि मोटापा बहुत अधिक न बढ़े। तीसरी बात है पौष्टिक भोजन। भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज आदि हम लेंगे, अगर संतुलित आहार होगा तो भी बचाव संभव है। तो श्रोताओं, आज आर्थराइटिस दिवस है, ये जो जानकारी है इसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस बीमारी से बचाव के उपाय हम सभी करें, तभी आज का जो दिन है वो सार्थक होगा। तो ये तो बात हो गई आज के दिन की, और अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। सोमवार का दिन है, 12 अक्टूबर की तारीख है। आपको हम अब से थोड़ी ही देर बाद जीवन सौरभ कार्यक्रम सुनवाएंगे, उसके बाद आप अक्षय निधि सुनेंगे और फिर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसमें आज का जो कार्यक्रम है वो केंद्रित होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर। सुनो कहानी कार्यक्रम 8:30 बजे आप सुनेंगे। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सेवा मार्ग। कला कल्लूरिनी कार्यक्रम का प्रसारण समय 9:00 बजे। आज बात होगी उस्ताद अमीर खान की। 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम होगा, आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार का गायन आप सुन सकते हैं। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा 10:00 बजे। 10:30 बजे आज़ाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरजू प्रसाद सिंह की, शब्दों के शिल्पकार। ये कार्यक्रम 11:00 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम चर्चा करेंगे बहादुर शाह जफर की। और 11:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे आज की पहली प्रस्तुति, कार्यक्रम का नाम जीवन सौरभ है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक संत और उनका शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने के निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्यों ना कुछ दिन बाद हम यहाँ से चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा को सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़कर चल दिया। लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के उसने चोरी से अपनी झोली में डाल दिए। चलते चलते दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी के तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से संध्या हो गई, न तो कोई भक्त आया और न ही नाव वाले का दिल पिघला। अंधेरा होता देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब हमें पहुंचा दो। उसे देखकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में रहे, देखो तुमने उसे त्यागा और हमारा काम बन गया। त्याग केवल कष्ट ही नहीं देता, त्याग आगे बढ़ने का माध्यम भी है।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद जैसे अक्षय निधि हैं, यही अक्षय निधि डॉक्टर निलिम्ब त्रिपाठी के स्वर में आपके लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 40वें वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत एवं भार्गव शौनक, देवता है सोमापूषा, अंतिम आधी ऋचा का अदिति और छंद है त्रिष्टुप।
1: सोमापूषणा जनना रईणाम जनना दिवो जनना पृथिव्याः जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्न मृतस्य नाभिम्। हे सोमदेव तथा पूषा देव, आप दोनों द्युलोक तथा पृथ्वीलोक के ऐश्वर्य उत्पादक हैं। जन्म लेते ही आप दोनों समस्त संसार के संरक्षक हुए हैं। देवों ने आपको अमृत का केंद्र बनाया है। इमौ देवौ जायमानौ जुषन्ते मौ तमांसी गुहता मजुष्टा आभ्यामिन्द्रः पक्व मामा स्वंतः सोमा पूषभ्याम जन दुस्रियासु। सोमदेव तथा पूषा देव के जन्म लेते ही सभी देवगण इन दोनों की सेवा करने लगे। ये दोनों देव अप्रिय अंधकार को नष्ट करते हैं। इंद्रदेव ने इन सोम तथा पूषा देवों की मदद से तरुणी धेनुओं में पक्व दुग्ध उत्पन्न किया। सोमा पूषणा रजसो विमानम सप्तचक्रम रथम विश्वमिन्वम विषुवृतम मनसा युज्युमानम तम जिन्वथो वृषणा पंच रश्मिमम। हे सोम तथा पूषा देवो, आप समस्त लोकों के उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक समस्त संसार के रक्षक सात ऋतु रूप मलमास सहित चक्रों से युक्त इच्छा से संचालित होने वाले पांच लगामों वाले रथ को हमारी ओर प्रेरित करें। दिव्यन्यः सदनम चक्र उच्चा पृथिव्यामन्यो अध्यंतरिक्षे तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुक्षुं रायस्पोषं विश्यताम नाभिमस्मे। आप में से एक ऊंचे द्युलोक में रहते हैं तथा दूसरे अंतरिक्ष और पृथ्वी में रहते हैं। वे दोनों देव हमारे लिए स्वीकार करने योग्य बहुत प्रकार के अन्नादि से पूर्ण पुष्टिकारक ऐश्वर्य प्रदान करें तथा पशुधन भी दें। विश्वान्यन्यो भुवना जजान विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति सोमा पूषणा ववतम धियम मे युवाभ्याम विश्वाह प्रतना जयेम। हे सोम तथा पूषा देवो, आप में से एक ने समस्त संसार को उत्पन्न किया है तथा दूसरे देव संपूर्ण संसार का पर्यवेक्षण करते हुए जाते हैं। हे सोम तथा पूषा देवों, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हुए हमारे कर्मों की रक्षा करें। आपकी मदद से हम शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करें। धियम पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रईं सोमो रईपतिर् दधातु अवतु देव्यदिति रनर्वा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। समस्त विश्व को तृप्त करने वाले पूषा देव, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग गामी बनाए। ऐश्वर्यपति सोमदेव, हमें धन प्रदान करें। अनुकूल व्यवहार करने वाली देवों की माता अदिति, हमारी रक्षा करें। हम सुसंतति होकर यज्ञ में आपका यशोगान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 40वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि, प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी की थी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, चलिए हम और आप मिलकर चलें आज की इस भजन यात्रा पर। इस भजन यात्रा पर साथ साथ चलते हुए पहला प्रश्न मन में यही उठ रहा है कि आखिर भक्ति है क्या। सुबह शाम हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो प्रश्न यही मन में बार बार आता है कि आखिर भक्ति क्या है। श्रोताओं, दरअसल भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम, या कहें ऊर्ध्वमुखी प्रेम, व्यक्ति और समष्टि के बीच का प्रेम। भक्ति यानी सर्व के साथ प्रेम में डूब जाना, समस्त जड़ चेतन के प्रति प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का कोई शास्त्र नहीं है, ये एक यात्रा है। भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं, ये तो बस एक जीवन रस है। भक्ति को समझने का प्रयास व्यर्थ है, इस जीवन रस में डूबकर ही इसे समझा जा सकता है। तो आइए इसी प्रेम में डूबे हुए हम और आप चलें आज की भजन यात्रा पर।

श्रोताओं, भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही ये है कि हे ईश्वर, मैं टूटा फूटा हूं, अभी मुझे जुड़ना है। मैं अधूरा हूं अभी कि मुझे पूरा होना है। कमियां हैं मुझ में, सीमाएं हैं हजार, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है बूंद बूंद और सागर हो जाना है। ये हृदय की पुकार ही वंदना है, प्रार्थना है।

भक्ति शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेगी, भक्ति भक्त के हृदय में लिखी मिलेगी। भक्ति शास्त्र शब्द सिद्धांत से परे एक जीवंत सत्य है। भक्त जहां मिले उसे वहीं पढ़ लेना होगा, कहीं और पढ़ने का उपाय है ही नहीं। भक्ति भाव समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। भक्ति बहुत सुगम है, लेकिन केवल उनके लिए जिनकी आंखें प्रेम को सोचते ही भर भर आती हैं, अपने ईश्वर का नाम लेते ही नम हो जाती हैं।

श्रोताओं, मनुष्य का अस्तित्व तीन तलों में विभाजित है, शरीर, बुद्धि और हृदय। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म, विचार और भाव। कर्मवाद की यात्रा, कर्मकांड की यात्रा स्थूल प्रक्रिया है। दूसरा द्वार पहले से कुछ सूक्ष्म है, ज्ञान का द्वार, जिसमें चिंतन मनन है, इसका नाम है ज्ञान योग। और तीसरा द्वार अति सूक्ष्म है, भाव का, प्रीति का, प्रार्थना का, और इसी का नाम है भक्ति योग। और भक्ति का मार्ग बेहद सुगम है।

श्रोताओं, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। कर्म से भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी है। ज्ञान से भी उस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये यात्रा भी संक्षिप्त नहीं है। बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। लेकिन भक्ति, भक्ति एक छलांग है। इसमें सीढ़ियां भी नहीं है और दूरी भी नहीं है। भक्ति एक क्षण में घट सकती है, तत्क्षण घट सकती है। ये केवल भाव की बात है, इधर भाव और उधर रूपांतरण। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है विशुद्ध प्रेम की।

तो श्रोताओं, आज की इस भजन यात्रा में हम और आप साथ साथ चले ईश्वर की आराधना करते हुए, उसकी वंदना करते हुए। उस परमेश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, सर्व कल्याण की इसी कामना के साथ अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कुछ जीवन एक पूरी फिजा की तरह होते हैं, अपना रंग, अपनी रोशनी, अपनी खुशबू लिए। दुनिया की उसी रफ्तार के बीच, उन्हीं मुश्किलों, उन्हीं आसानियों, उन्हीं खोने पाने के बीच उनका होना एक अलग वातावरण बनाता है, जिसकी आवाज तमाम शोर के बीच भी आपको लगातार पुकारती रहती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्म 23 मार्च सन 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनकी मां एक शिक्षिका थीं। जब वो बहुत छोटे थे तभी मातृ स्नेह से वंचित हो गए। पिता गांधी जी के घनिष्ठ अनुयायी और राष्ट्रभक्त थे। डॉक्टर लोहिया को युवावस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब वो पिता के साथ गांधी जी से मिले। गांधी जी के व्यक्तित्व और सोच से वो बहुत प्रभावित हुए तथा जीवन पर्यंत गांधी जी के आदर्शों का समर्थन करते रहे। 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया। डॉक्टर लोहिया ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इंटरमीडिएट के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। स्नातक की परीक्षा सन 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास की और फिर पीएचडी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश किया। 1932 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। वहां रहते हुए उन्होंने शीघ्र ही जर्मन भाषा भी सीख ली थी और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी बचपन से ही प्रबल इच्छा थी, जो लगातार बनी रही। जब वे यूरोप में थे तब उन्होंने वहां एक क्लब बनाया जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस रखा, जिसका काम यूरोप में रहने वाले भारतीयों के भीतर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता पैदा करना था। जिनेवा में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की सभा में भी भाग लिया। दर्शक गैलरी से विरोध प्रदर्शन करने और अनेक समाचार पत्रों में उसका स्पष्टीकरण देने की घटना ने उन्हें बेहद चर्चित कर दिया। भारत वापस आने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उन्होंने आधारशिला रखी। 24 मई सन 1939 को लोहिया जी को सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करने की अपील करने और उत्तेजक भाषण देने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन युवाओं के विद्रोह के डर से अगले ही दिन वे रिहा कर दिए गए। जून 1940 में उन्हें सत्याग्रह नाव शीर्षक से लेख लिखने के आरोप में गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए कारावास भेज दिया गया। दिसंबर सन 1941 में वे फिर रिहा हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वो देश के शीर्ष नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कई बार जेल यात्राओं के बाद भी देशवासियों का आह्वान जारी रखा। वो रुके नहीं, लगातार पुकारते रहे।

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चिंता सिर्फ देश की आजादी की ही नहीं थी, बल्कि उनके पास एक चिंतन था राष्ट्र के पुनर्निर्माण का। उन्होंने देशवासियों को जागरूक किया, कुओं, नहरों और सड़कों के निर्माण के लिए कहा। उन्होंने अपने भाषण और लेखन के माध्यम से अमीर गरीब की खाई, जातिगत असमानता और स्त्री पुरुष असमानता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कृषि संबंधित समस्याओं के आपसी निपटारे के लिए हिंद किसान पंचायत का भी गठन किया। समाजवाद के बारे में लोहिया जी का अपना मौलिक चिंतन था। इस संबंध में उनकी दृष्टि समग्रवादी थी, जिसमें उनकी विश्व दृष्टि भी समाई हुई थी। इस दृष्टि में अहिंसा को जोड़कर उन्होंने समाजवाद की धारणा एकदम बदल दी। उनका मानना था कि समाज के निर्माण में मानव और पदार्थ दोनों बराबर महत्व रखते हैं। समग्रता के दृष्टिकोण से लोहिया जी जिस धरातल पर समाजवादी समाज का महल खड़ा करना चाहते थे, उसमें द्वंद्व के बजाय संतुलन पर जोर था। उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का मूल आधार गरीबी हटाना है। एक निश्चित मात्रा के अलावा वो सभी की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति करने के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला। राज्य व्यवस्था के लिए उन्होंने चौखंबा राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये चार खंबे थे, ग्राम, जिला, प्रदेश और केंद्र। देश की गरीबी के मद्देनजर उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण और लघु उद्योगों का भी पक्ष लिया। समाजवाद में समता का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। उनका मानना था कि भारत जैसे विषमता वाले देश में ये और भी ज्यादा महत्व रखता है। उन्होंने जाति, वर्ण व्यवस्था और संपत्ति मोह को समस्या की तरह देखा। वो कहते थे कि इस आंतरिक बंधन और विभेद के रहने से देश किसी भी संकट की स्थिति में एकजुट होकर एक साथ खड़ा नहीं हो सकता। राम मनोहर लोहिया एक देश द्वारा दूसरे देश को दिए जाने वाले सहायता कार्यक्रम के भी विरोधी थे। वो कहते थे कि इससे देने वाले देश का लेने वाले देश पर हमेशा दबाव बना रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे एक विश्व कोष की बात करते थे जो गरीब देशों की मदद कर सके। विश्व समाजवाद के लिए डॉक्टर लोहिया मानवतावाद को आवश्यक मानते थे। मानवतावाद का मूल दर्शन वे विश्व बंधुत्व से जन्मा हुआ कहते थे। विश्व समाजवाद की प्रेरणा शायद डॉक्टर लोहिया ने भारतीय मनीषा के वसुधैव कुटुंबकम से ही ली थी। उनका मानना था कि मनुष्य एक सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना वाला प्राणी है और वो आध्यात्मिक भी है, और ये आध्यात्मिकता स्थायी है। ये जीवन का वो क्षेत्र है जहां न केवल मनुष्य मनुष्य में पूर्ण समता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में एकता है, अद्वैत है, करुणा, ममता और अहिंसा है।

रूस की सर्वहारा क्रांति और भारत का स्वतंत्रता संग्राम 20वीं शताब्दी के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जहां रूस की क्रांति ने सर्वहारा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं भारत के स्वाधीनता संग्राम ने एशिया और अफ्रीका से साम्राज्यवाद की समाप्ति का सिलसिला आरंभ किया। राम मनोहर लोहिया स्वयं क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांति ही उनकी क्रांतिकारिता का अंतिम लक्ष्य नहीं थी। उनकी क्रांतिकारिता व्यवस्था परिवर्तन और नई सभ्यता के निर्माण के लिए थी। क्रांति का मतलब उनके लिए सिर्फ सत्ता प्राप्ति नहीं था। डॉक्टर लोहिया जिस क्रांति की बात करते हैं, उसमें सत्ता प्राप्ति और व्यवस्था परिवर्तन एक साथ चलता है। इन दोनों पर आम आदमी का नियंत्रण होता है। वास्तव में डॉक्टर लोहिया के विचार किसी एक व्यक्ति या एक विचार के सांचे पर निर्भर नहीं है। उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों के विचार स्रोतों से बहुत कुछ ग्रहण किया और अपने चिंतन से उसे मिलाकर अपनी बात कही। 20वीं सदी की तमाम विसंगतियों से निपटने के लिए डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का एक नया क्रांति दर्शन प्रस्तुत किया। ये सात क्रांतियां थीं: नर नारी समता, चमड़ी के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष, पुरानी परंपरा के आधार पर पिछड़े और अगड़े समूहों या जातियों की गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष, विदेशी दासता के विरुद्ध और जनतंत्र के आधार पर विश्व सरकार की स्थापना, निजी संपत्ति के अस्तित्व और आसक्ति के विरुद्ध आर्थिक समता और नियोजित उत्पादन, निजी जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतांत्रिक उपाय और शस्त्रों के विरुद्ध सत्याग्रह। इन सातों क्रांतियों की डॉक्टर लोहिया ने बहुत विस्तार से चर्चा की और इन्हें ही इस सदी के स्वास्थ्य का लक्षण कहा। डॉक्टर लोहिया के लिए जनता की मुक्ति का अर्थ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सभी स्तरों पर अन्याय, शोषण और गैर बराबरी से मुक्ति था, और मुक्ति की अपनी इसी परिकल्पना के तहत वे एक योद्धा की तरह आजीवन जूझते रहे। वो साम्राज्यवाद हो, सामंतवाद हो, पूंजीवाद हो या धर्म, वर्ण, संप्रदाय तथा जाति जैसी मनुष्य और मनुष्य के बीच खड़ी दीवारें। भारतीय जनगण की वास्तविक मुक्ति की अपनी परिकल्पना को लेकर वे उच्च मध्यवर्गीय नेतृत्व से अपनी राजनीति के समूचे दौर में टकराते रहे। वृहद अध्ययन और अनुभवों से समृद्ध उनका विवेक उन्हें तमाम गहरे मोह से उबारता हुआ समाजवाद की देहरी तक ले आया था। देश और समाज की चिंता मन में लिए हुए 12 अक्टूबर सन 1967 को उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। अपने विस्तृत और गंभीर चिंतन के कारण वे न केवल प्रासंगिक हैं, बल्कि तमाम आधुनिक माने जाने वाले विचारकों की तुलना में सही मायनों में बेहद उदार और आधुनिक हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आज आपकी हम सफर हूँ मैं सुनीता सिंह। हमारे कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, बस एक छोटे से अंतराल के बाद प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सेवा मार्ग।

तारा ने 12 वर्ष तक दुर्गा की तपस्या की, न पलंग पर सोई, न केशों को सवारा और न नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से न जाती थी। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। घर के लोग उसे पागल कहते। माता समझाती, बेटी तुझे हो क्या गया है? क्या तू सारा जीवन रो रो कर काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं, पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं, क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता अब तो जो लगन लगी तो वो लगी, या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए हुए संसार से पायन कर जाऊंगी। तुम समझो मैं मर गई। इस तरह पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। ये धुंधला दीपक दैदीप्यमान हो गया। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्ज्वल रूप पूर्ण चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिहीन नेत्र जगमगा उठे, होंठ खुल गए, आवाज आई, तारा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांग। क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातःकाल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वो वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार पूर्ण प्रकाश का आभास हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की, किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं प्रदान हों जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वो ऐश्वर्य चाहती हूं जो सूर्य को भी मात दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा बोली, वो धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। वो सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गईं। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे और जवाहरात से लदी हूं। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ, अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ। द्वार पर नौबत बज रही थी। उसके आनंददायक सुहावने शब्द आकाश में गूंज रहे थे। द्वार पर मीनों तक हरियाली छाई थी। दासियां स्वर्णाभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थी। तारा को देखते ही वो स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा, मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक सुंदर ऊंचा शीशा रखा है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा और चकित रह गई। उसका सुंदर रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वो कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहां की छटा देखकर वो मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंके से मतवालों की तरह झुक रहे थे। तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वो कोमलता न थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जटित हौज था। इसमें हंस और बतख किलोने मार रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं। दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमती वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोंपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थीं। मां को देखा, वो आंगन में बैठी चरखा कात रही थी। तारा सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी।
पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बारगी जोर से धड़ाका हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं में से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती मुझे विद्युत सिंह कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे, आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। वो क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, श्रीमती मेरा नाम अग्नि सिंह है, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। वो भी जाने भी ना पाया था कि एक बारगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं, वायु सेवक हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वो शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास जाकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमय रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने शिष्ट भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूं। धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती, वो अपना अहोभाग्य समझता, सदैव के लिए उसके बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी, अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वो चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर वाटिका में एक साधु आया, सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके पास ही एक टूटी हुई बीन थी, उसी से वो प्रभावशाली स्वर निकालता जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान पर वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा, दिल में अपार अनुराग का संचार हुआ। मदमत्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगीं, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा, उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी होकर नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है, नहीं मैं ही हूं, मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूं। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूं, अथवा एक स्वर चित्र। वो सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष, तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसकी तालों पर थिरक रही थी। वो साधु अब प्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया। जब मधुर आलाप बंद हुआ, तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था, वो उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये सुख, ये सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधुओं को महल और धन का क्या काम? नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। महाराज, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं, लेकिन मुझे सुखों की कामना नहीं, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपनी अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। नहीं तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। ये कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व टूक टूक हो गया, लज्जा से सिर झुक गया, वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, वो एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा।
बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन करने के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती। पर साधु इससे तनिक भी विचलित ना हुआ। तारा के माया जाल का उस पर कोई असर ना हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे ज्ञान हुआ है कि प्रेम पर ऐश्वर्य सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर फिर से वही कृपा दृष्टि हो। कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूं उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आवे, उसकी आंखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, वो मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, आवाज सुनाई दी, तारा मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूं, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है, लेकिन माता संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊंगी। उसका एक ही मार्ग है, पर वो है बहुत कठिन। भला तुम उस पर चल सकोगी? वो कितना ही कठिन हो मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। तो सुनो, वो सेवा मार्ग है, सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रही उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती, साधु नींद में होते तो वो उन्हें पंखा झलती, जंगली फूल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे। तारा रास्ते के कंकड़ चुनती, उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर उन्हें सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब कोई और कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता था, हाथों में गड्ढे पड़ गए, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुरझा गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था, अब वहां प्रेम का राज था। वहां अब उसे सेवा की लगन थी, जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता है और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहां अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहां के पत्थर रुई से ज्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूं। धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते, तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनको दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बौधा रोगी मनुष्य साधु के पास आशीर्वाद लेने आते थे। तारा रोगियों की सेवा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूख जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी लेने के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता था, उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन वो हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए, उसने देखा देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही हैं। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा तेरी अभिलाषा पूरी हुई? हां माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। तुझे प्रेम मिल गया? नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञान हुआ
कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे प्रेम आदर सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं, उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था, आकाश में तारे ऐसे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदें। वायु में चित्ताकर्षक शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगा रही थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूं। बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूं। तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे अब कोई इच्छा नहीं, मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूं। लेकिन मैं दिखा दूंगा कि योग साधकर भी मनुष्य का हृदय निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा, पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव नदी की सैर करेंगे, प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी सेवा मार्ग पर चलकर मैं अब अभिलाषाओं से पूरी हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। हमारी इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जहां हम कला, संगीत और संस्कृति की उन महान विभूतियों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी साधना और सृजन से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उस विराट दुनिया में, जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर उतरते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं, हमारे विचारों को गहरा करते हैं और हमें उस अदृश्य साधना से जोड़ते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना शायद संभव ही नहीं है।
1: श्रोताओं, आज का हमारा ये कार्यक्रम कला कल्लोलिनी उस महान संगीत साधक, उस विलक्षण स्वर पुरुष और अद्वितीय शास्त्रीय गायक उस्ताद अमीर खान साहब को समर्पित है, जिनका नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उस्ताद अमीर खान साहब 15 अगस्त 1912 को जन्मे और 13 फरवरी 1974 को इस संसार से विदा हुए। उस्ताद अमीर खान साहब का जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन

0: युक्तियों को केवल आनंद के लिए ही नहीं बल्कि सीखने और समझने के लिए भी सुनते हैं।
1: अक्सर कहा जाता है कि किसी कलाकार की महानता का पता इस बात से चलता है कि वह अपने कला जगत को क्या नया देकर जाता है। उस्ताद अमीर खान साहब ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को केवल कुछ सुंदर बंदिशें या कुछ लोकप्रिय प्रस्तुतियां ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने गायकी के माध्यम से राग को समझने और प्रस्तुत करने का एक ऐसा तरीका दिया जिसमें गहराई थी, धैर्य था, स्वर के प्रति अद्भुत सम्मान था और सबसे बढ़कर एक ऐसी आंतरिक साधना थी जो श्रोताओं को धीरे धीरे अपने साथ बहा ले जाती है।
0: श्रोताओं, उनकी गायकी में जल्दबाजी तो नहीं थी। वे राग को खोलते थे, उसे समय देते थे, उसके एक एक स्वर को पहचानते थे, उसके भावों को स्पर्श करते थे और फिर धीरे धीरे उस राग की पूरी दुनिया श्रोता के सामने उपस्थित हो जाती थी। शायद यही कारण है कि उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी को समझने के लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे धैर्य के साथ अनुभव करना पड़ता है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब का जन्म इंदौर के संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। संगीत उनके लिए बाहर से सीखी जाने वाली कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि उनके जीवन और परिवेश का स्वाभाविक हिस्सा था। उनके पिता शाहमीर खान स्वयं सारंगी और वीणा के वादक थे और संगीत की गंभीर परंपरा से भी जुड़े हुए थे।
0: घर में संगीतकारों का आना जाना लगा रहता था, महफिलें सजती थी और अलग अलग प्रकार की गायकी और वादन की परंपराओं से परिचय मिलता रहता था। एक बालक के लिए ये वातावरण किसी विद्यालय से कम नहीं था। बचपन से ही अमीर अली, जो आगे चलकर उस्ताद अमीर खान साहब के नाम से विख्यात हुए, संगीत की अनेक ध्वनिया, स्वरों और शैलियों के बीच बड़े हुए।
1: उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने अपने पिता से सारंगी सीखना प्रारंभ किया, लेकिन उनके भीतर स्वर साधना के प्रति विशेष आकर्षण था। उनके पिता ने भी उनकी इस रुचि को पहचाना और धीरे धीरे उनका ध्यान गायन की ओर केंद्रित किया।
0: और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसे कलाकार की साधना जिसने आगे चलकर अपने स्वर को ही अपना सबसे बड़ा वाद्य बना लिया। उस्ताद अमीर खान साहब की आवाज की चर्चा करते हुए संगीत प्रेमी अक्सर उसकी गंभीरता और गहराई का उल्लेख करते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी ठहरावपूर्ण शक्ति थी जो विशेष रूप से मंद्र सप्तक में सुनाई देती थी।
1: सामान्यतः किसी गायक के लिए बहुत नीचे के स्वरों में समान स्पष्टता और प्रभाव बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन अमीर खान साहब की आवाज निचले स्वरों में भी उतनी ही स्थिर, गंभीर और प्रभावशाली लगती थी। वे स्वर को केवल छूकर आगे नहीं बढ़ जाते थे, बल्कि उसे उसका पूरा स्थान देते थे।
0: यही उनके संगीत की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। उनके यहाँ स्वर किसी दौड़ का हिस्सा नहीं थे। हर स्वर की अपनी पहचान थी, अपना भाव था और राग के भीतर अपना एक विशिष्ट स्थान था।
1: उनकी गायकी को समझने के लिए यदि हम विलंबित ख्याल की बात करें तो यह कहना उचित होगा कि उस्ताद अमीर खान साहब ने विलंबित प्रस्तुति को केवल धीमी गति का संगीत नहीं रहने दिया, बल्कि उसे गहन राग विस्तार की एक साधना बना दिया।
0: श्रोताओं, विलंबित का अर्थ केवल धीरे गाना नहीं है, उसके भीतर समय को साधना पड़ता है। वहाँ हर स्वर को उचित स्थान देना होता है, हर मीड़ को उसके पूरे सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करना होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राग का विकास इस प्रकार से करना होता है कि श्रोता को कभी भी ऐसा न लगे कि संगीत कहीं रुक गया है या केवल एक ही बात दोहराई जा रही है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब इस कला के अप्रतिम साधक थे। वे राग को धीरे धीरे खोलते थे और एक स्वर से दूसरे स्वर तक पहुँचते हुए उस पूरे संगीत संसार को आपस में जोड़ देते थे।
0: उनकी गायकी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि जब वे किसी स्वर पर ठहरते थे तो उस स्वर को राग से अलग करके प्रस्तुत नहीं करते थे। वे उस स्वर को राग के पूरे परिप्रेक्ष्य में रखते थे। किसी एक स्वर का विस्तार करते हुए भी उनके मन में पूरे राग का स्वरूप उपस्थित रहता था।
1: और श्रोताओं, यही कारण था कि उनकी प्रस्तुति में अलग अलग स्वर बिखरे हुए मोतियों की तरह नहीं लगते थे, बल्कि एक सुंदर और सुव्यवस्थित माला की तरह सामने आते थे। राग का एक एक अंश धीरे धीरे श्रोताओं के मन में बैठता जाता था और प्रस्तुति समाप्त होने तक ऐसा लगता था कि उस राग की एक पूर्ण छवि हमारे भीतर बन चुकी है।
0: उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, उस्ताद अमीर खान साहब द्वारा गाया गया राग बिलास खानी तोड़ी उनके संगीत दृष्टि और स्वर साधना का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण माना जाता है। सुबह के समय गाए जाने वाले इस गंभीर और चिंतनशील राग में उनकी आवाज का मंद्र विस्तार विशेष रूप से प्रभावशाली दिखाई देता है।
1: जब वे धीमी गति में राग का विकास करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चित्रकार बहुत धैर्य के साथ एक विशाल चित्र की रेखाएं बना रहा हो। पहले कुछ स्वर, फिर उनका आपसी संबंध, फिर एक नए स्वर की ओर बढ़ना और उसके बाद पूरे राग के साथ उस स्वर का रिश्ता स्थापित करना।
0: ये प्रक्रिया सुनने वाले को राग के भीतर ले जाती है। यही तो महान शास्त्रीय संगीत की शक्ति है कि वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह धीरे धीरे एक अनुभव बन जाता है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी में एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी, राग के स्वभाव को समझने की उनकी असाधारण क्षमता। हर राग की अपनी प्रकृति होती है, अपना समय होता है, अपना भाव होता है, अपने विशेष स्वर होते हैं और अपने चलन होते हैं।
0: एक महान कलाकार वही है जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए राग के स्वभाव को कभी न भूले। अमीर खान साहब के यहाँ तकनीक राग पर हावी नहीं होती थी। सरगम, तान, लयकारी या मेरुखंड, इनमें से कोई भी तत्व केवल श्रोता को प्रभावित करने के लिए नहीं आता था, हर चीज राग की सेवा में उपस्थित होती थी।
1: और शायद यही कारण था कि उनकी जटिल से जटिल तान भी केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं लगती बल्कि राग के स्वाभाविक विकास का एक हिस्सा प्रतीत होती है।
0: श्रोताओं, अब संधि प्रकाश रागों में उनकी प्रस्तुति की बात हम करें तो राग मारवा का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। मारवा हिंदुस्तानी संगीत का एक अत्यंत गहन और विशिष्ट राग है जिसमें भावों की एक अलग ही दुनिया है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब जब मारवा का विस्तार करते हैं तो वे राग के स्वभाव के अनुसार अपने स्वर विन्यास को बदलते हैं। वे किसी दूसरे राग में जिस प्रकार मंद्र सप्तक का विस्तार करते हैं उसी प्रकार हर राग में नहीं करते।
0: ये उनके संगीत के प्रति गहरे अध्ययन और संवेदनशीलता को दर्शाता है। वे जानते थे कि हर राग को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता, राग की अपनी मांग होती है और कलाकार को उस मांग को समझना पड़ता है।
1: राग मारवा में उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुति को सुनते हुए यह अनुभव होता है कि वे श्रोताओं को एक एक कदम लेकर राग के भीतर ले जा रहे हैं। उनकी प्रस्तुति में स्वर के बीच के संबंध, धैवत और ऋषभ की विशिष्ट भूमिका, षडज का अत्यंत संतुलित स्पर्श और राग के वातावरण को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है।
0: एक महान संगीतकार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह केवल स्वरों को सही गाने तक सीमित न रहे बल्कि उनके बीच की अदृश्य दूरी, तनाव, आकर्षण और भावात्मक संबंधों को भी समझे। अमीर खान साहब की गायकी में ये समझ असाधारण स्तर पर दिखाई देती है।
1: उनकी प्रस्तुति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि वे राग को क्रमशः विकसित करते थे। पहले एक शांत और गहरा विस्तार, फिर धीरे धीरे नए आयाम, उसके बाद सरगम, लयकारी और फिर तानों का प्रवेश।
0: लेकिन ये सब अचानक नहीं होता था। उनके संगीत में एक स्वाभाविक प्रवाह था। एक चरण दूसरे चरण से इस प्रकार जुड़ता था कि श्रोता को बदलाव का झटका नहीं लगता था, जैसे कोई नदी शांत गति से बहते बहते धीरे धीरे अपना वेग बढ़ाती है। वैसे ही उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी में गति और ऊर्जा का विस्तार होता था।
1: उनके संगीत में सरगम का प्रयोग भी अत्यंत विशिष्ट था। सरगम केवल सा रे गा मा के उच्चारण का नाम नहीं है। जब कोई महान कलाकार सरगम गाता है तो वह स्वरों के माध्यम से राग के भीतर नए विचार प्रस्तुत करता है।
0: अमीर खान साहब की सरगम में एक अद्भुत बौद्धिकता और संगीतात्मकता का मेल दिखाई देता है। वे जटिल स्वर क्रमों को भी इस प्रकार प्रस्तुत करते थे कि उसमें गणित तो दिखाई देता था लेकिन संगीत की आत्मा कभी नहीं खोती थी। यही वह स्थान है जहां उनके मेरुखंड के प्रयोग की चर्चा आती है।
1: मेरुखंड हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी पद्धति है जिसमें स्वरों के विभिन्न संयोजनों और क्रमों के माध्यम से नए नए स्वर विन्यास बनाए जाते हैं। इसे केवल गणित मान लेना भूल होगी। गणित अनेक संभावनाएं दे सकता है, लेकिन उनमें से कौन सा क्रम संगीतात्मक है, कौन सा राग के अनुकूल है और कौन सा क्रम वास्तव में श्रोताओं के मन को छू सकता है, यह निर्णय कलाकार की संवेदना करती है।
0: उस्ताद अमीर खान साहब ने मेरुखंड को अपनी गायकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वे स्वरों के संयोजन से जटिल ताने बनाते थे, लेकिन उनके तानों में केवल चमत्कार नहीं होता था, उनमें राग की पहचान सुरक्षित रहती थी।
1: यहाँ हमें केवल एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। शास्त्रीय संगीत में तकनीकी क्षमता और संगीतात्मकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई कलाकार बहुत तेज ताने ले सकता है, जटिल लयकारी कर सकता है, अनेक स्वर संयोजन प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यदि उसमें राग का भाव और संगीत की आत्मा नहीं है तो वह प्रस्तुति केवल कौशल का प्रदर्शन बनकर ही रह सकती है।
0: उस्ताद अमीर खान साहब की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि उनकी तकनीक हमेशा उनके संगीत के साथ जुड़ी रही। उनके ताने जटिल थीं, उनकी सरगम अद्भुत थी, उनका लय बोध असाधारण था, लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा राग बोध था।
1: और जब वे तेज तानों की ओर बढ़ते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि धीमी प्रस्तुति समाप्त हो गई और अब कोई दूसरा संगीत शुरू हो गया है, बल्कि ऐसा लगता था कि वही राग जो अभी तक शांत और गंभीर रूप में हमारे सामने था, अब अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को प्रकट कर रहा है।
0: यही एक महान प्रस्तुति का अनुपम सौंदर्य है। उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी में धीमी गति और तेज गति, गंभीरता और ऊर्जा, चिंतन और कौशल, ये सभी विरोधी तत्व नहीं थे, बल्कि एक ही संगीत यात्रा के अलग अलग पड़ाव थे।
1: उनकी प्रसिद्ध बंदिशों में राग मारवा की गुरु बिन ज्ञान न पावे का विशेष स्थान है। इस प्रस्तुति में वे बंदिश के शब्दों और राग के भाव को स्थापित करने के बाद जिस तरह से तेज सरगम और तानों की ओर बढ़ते हैं, वह उनकी गायकी के अद्वितीय विस्तार को भी सामने लाता है।
0: उनके तानों में दोहराव कम मिलता है। वे एक ही प्रकार के स्वर विन्यास को बार बार दोहरा कर श्रोता को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते। हर नई तान एक नया विचार लेकर आती है। यही रचनात्मकता उन्हें केवल एक अच्छे गायक से कहीं अधिक एक महान संगीत विचारक बनाती है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब को अक्सर म्यूजिशियंस ऑफ म्यूजिशियन अर्थात संगीतकारों का संगीतकार कहा जाता है, और यह एक बहुत बड़ा सम्मान है।
0: इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी गायकी केवल संगीतकारों के लिए ही थी। उनकी आवाज और उनका संगीत सामान्य श्रोता को भी गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन साथ ही संगीत को जानने वाले कलाकार उनकी गायकी में उस सूक्ष्म बात को भी पहचानते हैं जिन्हें साधारण रूप से सुनने पर शायद हमें तुरंत समझना कठिन हो।
1: एक विद्यार्थी उनकी स्वर योजना को सुन सकता है, एक गायक उनके राग विस्तार का अध्ययन कर सकता है, एक संगीतकार उनकी लयकारी की संरचना को समझ सकता है, और एक सामान्य श्रोता उनकी आवाज की गहराई में खो सकता है। बस यही किसी महान कलाकार की व्यापकता है।
0: उनके जीवन की यात्रा भी हमें बताती है कि महानता हमेशा प्रारंभ से ही तालियों और प्रसिद्धि के साथ नहीं आती। अमीर खान साहब जब मुंबई पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, तब कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए, तो प्रारंभिक दौर में उन्हें वैसी स्वीकृति नहीं मिली जिसकी आज हम कल्पना करते हैं।
1: लेकिन एक सच्चा साधक बाहरी प्रतिक्रिया से अपनी साधना का निर्णय नहीं करता। उन्होंने संगीत को और गहराई से समझा, अपनी शैली को विकसित किया और अपने स्वर के साथ लगातार प्रयोग करते रहे। यही निरंतर साधना आगे चलकर उनकी पहचान बनी।
0: उनका कुछ समय रायगढ़ रियासत में भी बीता, जहां संगीत की समृद्ध परंपरा थी। जीवन के विभिन्न स्थानों पर रहने और अलग अलग संगीतकारों से संपर्क ने उनकी दृष्टि को व्यापक बनाया। दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई जैसे शहरों में संगीत के विविध वातावरण से जुड़ने का उन्हें अवसर मिला।
1: लेकिन इन सब अनुभवों के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी अपनी विशिष्ट गायकी। उन्होंने किसी की केवल नकल नहीं की। महान कलाकार परंपरा से सीखता है, अनेक स्रोतों से ग्रहण करता है, लेकिन अंततः अपनी स्वयं की आवाज खोजता है। और उस्ताद अमीर खान साहब ने भी यही किया।
0: उन्होंने संगीत को केवल संगीत सम्मेलनों और शास्त्रीय मंचों तक ही सीमित नहीं रखा, भारतीय फिल्मों के माध्यम से भी उनकी आवाज व्यापक जनसमूह तक पहुंची। बैजू बाबरा, शबाब और झनक झनक पायल बाजे जैसी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की उनकी भागीदारी ने आम श्रोताओं को उनकी कला से परिचित कराया।
1: यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि फिल्म संगीत के माध्यम से शास्त्रीय संगीत की सुंदरता उन लोगों तक भी पहुंचती है जो शायद कभी किसी लंबी शास्त्रीय महफिल में न गए हों। उस्ताद अमीर खान साहब ने फिल्मों में भी अपने संगीत की गरिमा बनाए रखी। उनका उद्देश्य केवल लोकप्रिय होना नहीं था बल्कि शास्त्रीय संगीत की आत्मा को व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाना था।
0: मित्रों, आज जब हम मनोरंजन की दुनिया में बहुत तेज गति से अभ्यस्त हो चुके हैं, तब उस्ताद अमीर खान साहब का संगीत हमें धैर्य का महत्व याद दिलाता है। उनकी गायकी सुनते समय हमें कुछ देर रुकना पड़ता है।
1: तुरंत किसी ऊंचे स्वर, तेज तान या आकर्षक प्रभाव की प्रतीक्षा छोड़कर हमें संगीत के साथ चलना पड़ता है, और शायद यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी देन है कि वह हमें सुनना सिखाती है, केवल कानों से नहीं बल्कि मन से सुनना।
0: एक स्वर कहाँ से आया, कहाँ ठहरा, किस स्वर की ओर गया और राग के वातावरण में उसने क्या परिवर्तन किया, इन सब बातों को महसूस करना।
1: श्रोताओं, संगीत की दुनिया में ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जिनके बारे में वर्षों बाद भी नई पीढ़ियां लगातार अध्ययन करती रहती हैं। उस्ताद अमीर खान साहब का संगीत आज भी जीवित है क्योंकि उसमें केवल अपने समय की छाप नहीं है, उसमें एक ऐसी गहराई है जो हर युग के संगीत प्रेमी को आकर्षित कर सकती है।
0: आज भी जब कोई विद्यार्थी विलंबित ख्याल की संरचना समझना चाहता है, जब कोई गायक मंद्र सप्तक की शक्ति और स्थिरता को सुनना चाहता है, जब कोई कलाकार मेरुदंड के संगीतात्मक प्रयोग को समझना चाहता है, या जब कोई रसिक राग के गहन विस्तार में डूबना चाहता है, तो उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन जाती है।
1: उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि वे संगीत को निरंतर आत्म विकास की प्रक्रिया मानते थे। एक कलाकार के लिए कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, हर राग में नई संभावना होती है, हर स्वर में नया भाव हो सकता है और हर प्रस्तुति में एक नई खोज संभव है।
0: शायद इसी कारण उनकी गायकी में हमें जड़ता नहीं मिलती। वे परंपरा का सम्मान करते हैं परंतु उसके भीतर अपनी रचनात्मक दृष्टि भी विकसित करते हैं।
1: उनके शिष्यों और उनके संगीत के प्रभावित कलाकारों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पंडित अमरनाथ जैसे शिष्यों ने उनकी गायकी की अनेक विशेषताओं को आत्मसात किया और अपनी स्वयं की आवाज तथा व्यक्तित्व के साथ उसे आगे बढ़ाया।
0: यही किसी सच्चे गुरु की सफलता है कि उसका शिष्य उसकी प्रतिकृति ना बने बल्कि उससे सीखकर अपनी राह बनाए। उस्ताद अमीर खान साहब की संगीत परंपरा का प्रभाव केवल प्रत्यक्ष शिष्यों तक ही सीमित नहीं रहा, उनकी गायकी ने अनेक गायकों और संगीत प्रेमियों को प्रभावित किया और आज भी इंदौर घराने की चर्चा उनके नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती।
1: उस्ताद अमीर खान साहब को संगीत के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया।
0: श्रोताओं, ये सम्मान उनके योगदान की औपचारिक पहचान अवश्य थे परंतु उनकी वास्तविक पहचान उनके स्वरों में थी। कभी कभी लगता है जैसे महान कलाकार पुरस्कारों को भी अर्थ प्रदान करते हैं।
1: उस्ताद अमीर खान साहब के साथ भी यही बात लागू होती है। उनका सबसे बड़ा पुरस्कार शायद ये है कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी उनका संगीत सुनने वाले के मन में प्रश्न, आश्चर्य, शांति और प्रेरणा सब एक साथ जगाता है।
0: 13 फरवरी 1974 को एक सड़क दुर्घटना में उनका असमय निधन हो गया। उनका जाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए एक बड़ी क्षति थी। एक ऐसा कलाकार जिसकी साधना अभी भी नई नई दिशाओं में विकसित हो रही थी, अचानक हमारे बीच से चला गया।
1: लेकिन संगीत की यही विशेषता है कि शरीर चला जाता है, आवाज रिकॉर्डिंग में रह जाती है, और उससे भी आगे कलाकार की सोच उन लोगों के भीतर जीवित रहती है जो उसे सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं।
0: उस्ताद अमीर खान साहब आज हमारे बीच भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनका स्वर आज भी जीवित है। वह स्वर आज भी किसी सुबह बिलास खानी तोड़ी की गंभीरता में सुनाई देता है, किसी संध्या मारवा की गहराई में महसूस होता है, किसी विद्यार्थी की रियाज में प्रेरणा बनकर उपस्थित होता है, और किसी संगीत प्रेमी के मन में ये प्रश्न जगाता है कि संगीत की गहराई आखिर कितनी विशाल हो सकती है।
1: और जब हम उस्ताद अमीर खान साहब को याद करते हैं तो हमें केवल एक महान गायक को याद नहीं करना चाहिए, हमें उस साधना को भी याद करना चाहिए जिसमें सफलता से अधिक महत्वपूर्ण था स्वर की सच्चाई। हमें उस धैर्य को भी याद रखना चाहिए जिसमें राग को जल्दबाजी में समाप्त नहीं किया जाता बल्कि उसे खुलने का समय दिया जाता है।
0: बिल्कुल, हमें उस रचनात्मकता को भी याद करना चाहिए जिसमें जटिल गणित भी संगीत बन जाता है, और हमें उस विनम्रता को भी समझना चाहिए जो एक सच्चे कलाकार को जीवन भर विद्यार्थी बनाए रखता है।
1: श्रोताओं, हम उनके संगीत से यही सीख सकते हैं कि किसी भी कला में गहराई पाने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर साधना चाहिए। दुनिया की तेज रफ्तार हमें हर चीज जल्दी पाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन महान कला हमें ठहरना सिखाती है।
0: उस्ताद अमीर खान साहब का संगीत भी हमें ठहरना सिखाता है, एक स्वर को चुनना, उसके भीतर उतरना, उसके अगले स्वर से संबंध को महसूस करना और फिर धीरे धीरे उस पूरी संगीत यात्रा का हिस्सा बन जाना।
1: वे सचमुच एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें केवल महान गायक कहना शायद पर्याप्त नहीं है। वे स्वर के चिंतक थे, राग के साधक थे, परंपरा के संवाहक थे और अपनी विशिष्ट संगीत दृष्टि के निर्माता भी थे।
0: उनकी गायकी में ज्ञान था, अनुभव था, तकनीक थी, कल्पना थी और सबसे बढ़कर संगीत के प्रति असीम प्रेम था। यही कारण है कि उन्हें संगीतकारों का संगीतकार कहा जाता है, एक ऐसा कलाकार जिसे जितना अधिक सुना जाए उतना ही अधिक नया अनुभव हमें मिलता है।
1: तो श्रोताओं, आइए आज इस महान स्वर साधक को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, याद करें उस गंभीर, गहरे और अनंत स्वर को जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दी।
0: याद करें उस कलाकार को जिसने विलंबित ख्याल को धैर्य और चिंतन की अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए याद करें उस संगीतज्ञ को जिसने मेरुखंड जैसे जटिल स्वर विन्यासों को भी राग की आत्मा से जोड़े रखा।
1: और याद करें उस महान संगीत साधक को जिसने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया।
0: उस्ताद अमीर खान साहब, आपका शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपकी आवाज आज भी जीवित है।
1: आपके स्वर आज भी रागों की उस अनंत यात्रा पर चल रहे हैं जहां समय का कोई बंधन नहीं, जहां साधना कभी समाप्त नहीं होती और जहां एक सच्चा कलाकार अपने संगीत के माध्यम से हमेशा अमर हो जाता है।
0: उनकी जीवन यात्रा भले ही वर्षों में सीमित दिखाई देती हो लेकिन संगीत की दृष्टि से ये एक ऐसी अनंत यात्रा है जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक सुनाई देता रहेगा।
1: उस्ताद अमीर खान साहब को शत शत नमन।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ कला कल्लोलिनी में अब हमें दीजिए अनुमति,
1: फिर मिलेंगे कला, संस्कृति और संगीत की एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
1: और मैं विजयकांत नायक,
0: कार्यक्रम का लेखन मनीषा चतुर्वेदी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन जुगलबंदी। कलाकार हैं आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।

0: ये गायन जुगलबंदी हुई भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में।
1: राधे राधे। प्रेक्षागृह में उपस्थित आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, गुणीजनों को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्रणाम। सबको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे लिए आज एक बहुत ही खास अवसर है, क्योंकि भोपाल की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। ग्वालियर का जन्म, भोपाल में आगे की सारी परवरिश, और 14-15 साल की थी तब पुणे चली गई थी आगे गाना सीखने के लिए। तो बचपन से ही भारत भवन एक बहुत ही खास मंच रहा है मेरे लिए। बड़े बड़े उस्तादों को, पंडितों को, गायकों को सुना है, उनसे इंस्पायर हुए, ऐसा लगा कि यहाँ पे गाना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए। तो आज गुरु कृपा से, परमेश्वर कृपा से आज यहाँ हैं। कई बार आती गई भारत भवन गाने के लिए, आज फिर से हैं हम लोग यहाँ पे। आज आस्था मेरी परम सखी, हम लोग दोनों यहाँ पे हैं। तो आज हम लोग राग मेघ से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पारंपरिक बंदिश है मध्य विलंबित झपताल में, जिसके बाद द्रुत बंदिश पंडित अरुण भादुरी जी की रचना है। आज हमारे लिए संगत में रामेंद्र जी हैं, राजेंद्र भाई हैं, महेश भाई हैं। हम लोग शुरू करते हैं।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: छेड़ देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
1: ससुराल गेंदा
0: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार फेरे पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे, हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था। पूरे मोहल्ले में धूम थी, रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष दो बल्कि कभी कभी तीन वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गई, तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक

0: घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसे को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया, बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका किंतु रुपया बकाया था, वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था रुपया चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पढ़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्ती को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया। राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहां से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपए मूल, 5,000 रुपए ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां। बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाता हूं, विषयी हूं, कुशल हूं, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे। यहां तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ। इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार को स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष। रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं। बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है। किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है, तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा, आप श्री अयोध्या से आई हैं? आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है? बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा, तो मकान आपका यही इसी शहर में है? तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया? ये तो मैं पहले ही समझ गया था। ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं। ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूं। यहां सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहां लोभ का ध्यान रखते हैं, वहां मैं भलाई रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानिए, मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो, उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया। सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे, सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा, तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार ना करोगे? बेटा, ममता बुरी होती है। संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का इसने हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहां तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया। पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो, तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा, तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माता जी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उसने कहा, माताजी मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपये आते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपये की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपये से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अथाह प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आईं। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता जी ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं, और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधू की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
3: आयुष्मान मेधावी हो, अपनी अपनी आसंदी पर बैठे।
4: जी गुरुजी।
3: बच्चों, गणित की इस कक्षा में आज हम ज्यामिति और बीज गणित पर चर्चा करेंगे।
5: गुरुजी, ये अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं?
3: बेटे, ये नाम पश्चिमी देशों का दिया है। शून्य और एक से नौ तक के अंकों को दशमिक प्रणाली कहते हैं। इन 10 अंकों की सहायता से कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। इस दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ये अंक ही पश्चिमी देशों द्वारा अरेबिक न्यूमरल्स कहे गए हैं।
6: ऐसा क्यों गुरुजी?
3: बेटे, हुआ यूं कि 9वीं शताब्दी में ये अंक अरब पहुंचे। उस समय अरब का एक विद्वान अल ख्वारिज्मी भारत आया और उसने यहां आकर अंक गणित का अध्ययन किया। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में भी किया था। इन अंकों को अरबी में हिंदसा यानी हिंद से आए कहा जाता है। कहा जाता है अल ख्वारिज्मी की गणित की पुस्तक का अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ और जब ये पुस्तक पश्चिमी देशों में पहुंची तो अरब से पहले ये अंक मिस्र में और फिर उत्तरी अरब से धीरे धीरे पश्चिमी देशों को मिले। पश्चिम ने इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहा, जबकि ना तो इसकी खोज और ना ही इसका विकास अरब में हुआ है।
5: यानी अरेबिक न्यूमेरल्स सही मायने में भारतीय न्यूमेरल्स है?
3: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज तो सारा विश्व ये मानने लगा है कि अंकों और दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। न केवल अंक गणित बल्कि बीज गणित ज्यामिति त्रिकोणमिति कैलकुलस और वेक्टर गणित आदि गणित की विविध शाखाओं का जन्म और विकास भी भारत में ही हुआ है। आज पूरे विश्व में दशमिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है।
7: यह तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है।
3: निश्चय ही वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। क्यों ना हम आज वेदकालीन भारत की एक झलक देख लें। चलिए, आज हम आप सभी को महर्षि बोधायन के आश्रम में लिए चलते हैं। वे एक महान गणितज्ञ थे। उनका कालखंड ईसा से 1500 वर्ष पूर्व का माना जाता है।

0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। युवराज रोहित
1: जी आचार्य श्री,
0: अभी जिस मंत्र का उच्चार किया गया है वो कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है?
1: आचार्य श्री, यह ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र है। इसमें ब्रह्म और ब्रह्मांड को पूर्ण मानते हुए कहा गया है कि ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर भी ये पूर्ण ही रहता है। अंत में पूर्ण पूर्ण में लीन हो जाता है, फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है।
0: ठीक, इस अद्भुत संकल्पना में ब्रह्म की व्याख्या होती है, पर यह तो इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है, इसका गणितीय अर्थ कौन बताएगा? हाँ आपस्तंभ, तुम बताओ।
2: आचार्य श्री, गणितीय अर्थ में यह मंत्र शून्य की सटीक व्याख्या करता है। हम जानते हैं शून्य में से शून्य घटा दिया जाए तो भी शून्य ही बचता है, इसी तरह शून्य में शून्य जोड़ दिया जाए तो भी शून्य ही रहता है।
0: एकदम सही। शिष्यों, पिछले दिनों आपने योग, वियोग, पूरण, भाग आदि के जो गणितीय प्रश्न हल किए थे उनसे इस मंत्र में कही बातों का सत्यापन सहज ही हो जाता है।
1: आचार्य श्री, आप स्तंभ मुनि बता रहे थे कि आपने एक नए सूत्र की रचना की है जिसमें अनेक नए प्रमेय विकसित किए गए हैं।
0: हाँ वत्स, ये सत्य है। हमने मुनि आपस्तंभ को इन नए प्रमेयों के सत्यापन तथा इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न विकसित करने का कार्य सौंप रखा है। मुनि आपस्तंभ, आपके कार्य की प्रगति क्या है?
2: आचार्य श्री, कार्य की प्रगति काफी संतोषप्रद है। प्रमेयों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी प्रमेय सत्यापन के विविध प्रयोगों में सत्य सिद्ध हुए हैं। अभ्यास प्रश्न का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे।
0: ठीक, हम आश्वस्त हुए। यूं तो हम प्रत्येक प्रमेय का स्वयं सत्यापन कर चुके थे, पर किसी भी प्रमेय की सफलता और उपयोगिता की कसौटी ये तथ्य है कि वो विविध प्रायोगिक परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो।
1: आचार्य श्री, शुल्ब सूत्र की प्रमुख विशेषता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही कृपया बताएं इसकी उपयोगिता क्या होगी?
0: वत्स, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। किसी भी अनुसंधान का महत्व उसके संभावित उपयोग पर ही निर्भर करता है। अनुसंधान केवल अनुसंधान के लिए नहीं होना चाहिए। अनुपयोगी अनुसंधान समय और शक्ति का अपव्यय ही कहलाएगा।
2: प्रिय मित्र, आचार्य श्री का ये शुल्ब सूत्र ग्रंथ गणित का एक बहुमूल्य ग्रंथ माना जाएगा। गणित के इस विलक्षण ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे गए हैं। इनमें दिए गए प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: और वत्स, जहां तक इस ग्रंथ की उपयोगिता का प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रमेयों के ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग करके यज्ञ की वेदियों, मंदिरों तथा भवनों का निर्माण पर्याप्त सुगम हो जाएगा। यज्ञ वेदी चाहे उड़ते पक्षी के आकार की हो या चतुष्कोणी, इनका निर्माण शुल्ब सूत्र में वर्णित ज्यामितीय सिद्धांतों के आधार पर शास्त्रोक्त बनाया जा सकता है। वैसे ग्रंथ की उपयोगिता तो तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम लोग इसका पठन पाठन कर इस पर मनन करोगे, इसमें दिए प्रमेयों के अनुप्रयोगों पर कार्य करोगे।
2: उदाहरण के लिए शुल्ब सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय कहता है, दीर्घ चतुरस्याशनया रज्जु पार्श्वमानी त्रियकमानी यत् पृथक भूते कुरुतस्त दुभ्यम करोति। अर्थात आयत के कर्ण यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है।
1: आपके कहने का अर्थ तो यह हुआ कि किसी आयत का कर्ण क्षेत्रफल में उतना ही होता है जितना उसकी लंबाई और चौड़ाई का होता है।
2: हाँ मित्रों, इसे हम यूं समझ सकते हैं कि यदि किसी आयत आ बा सा दा आयत का कर्ण बादा और लंबाई आ बा और चौड़ाई आ दा हो तो बादा वर्ग दो बराबर आबा वर्ग दो धन आदा वर्ग दो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है जो भवन या मंदिर के निर्माण में बहुत अधिक सहायक हो सकता है।
0: ऐसे ही अगले दो प्रमेय हैं। पहला प्रमेय कहता है आयत का कर्ण आयत का सम द्विभाजन करता है, जबकि दूसरा प्रमेय कहता है कि सम चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इन प्रमेयों का सत्यापन किसी आयताकार या सम चतुर्भुजी सभा भवन के फर्श पर आसानी से किया जा सकता है।
2: इसी तरह शुल्ब सूत्र में वे विधियां भी दी गई हैं जिनके द्वारा आप एक त्रिकोण के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वर्ग बना सकते हैं या किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वर्ग के दो गुने या तीन गुने क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं या वर्ग के एक तिहाई क्षेत्रफल का भी वृत्त बना सकते हैं। आप लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि शुल्ब सूत्र में दिए गए प्रमेय और ये अनुप्रयोग कितने अभिनव और कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: निश्चय ही शुल्ब सूत्र में दिए गए ये सभी अनुसंधान एकदम अभिनव और महत्वपूर्ण हैं। अपने देश में ही नहीं, संसार के दूसरे देशों के लिए भी ये एकदम नूतन और अद्भुत जानकारी देने वाले होंगे।
2: इतनी ही अभिनव और महत्वपूर्ण है शुल्ब सूत्र में वर्णित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विभिन्न श्रेणियां। ऐसे ही शुल्ब सूत्र में वर्णित क्रमचय और संचय के सूत्र हैं। विश्व में ये भारत के गणित के क्षेत्र में दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। एक और अद्भुत देन शुल्ब सूत्र की रूट दो और रूट तीन जैसी संख्याओं के मान निकालने की विधियां हैं।
0: शुल्ब सूत्र पर तो चर्चा चलती रहेगी, पर अब मध्यान्ह भोजन का समय हो गया है, सो हमें ये चर्चा यहीं रोककर भोजन कक्ष की ओर चलना होगा।

0: मुनिवर, आज आचार्य श्री को नदी तट से लौटने में विलंब हो गया है।
1: लगता है नदी तट पर उनकी भेंट किसी सुधी व्यक्ति से हो गई है, अन्यथा उनका दैनिक कार्यक्रम निश्चित रहता है। अलस भोर प्रथम पहर में उठना, दैनिक कर्म से निवृत्त हो नदी में जाकर स्नान करना, फिर संध्या वंदन कर ध्यानस्थ बैठना। आचार्य श्री हमेशा अपने शिष्यों से कहते हैं, ऋषि के लिए सुयोग्य तेजस्वी मंत्र दृष्टवा वर्चस्वी होना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान और मंत्रों की साधना परम आवश्यक है।
0: मुनिश्री, कई बार आश्चर्य होता है कि आचार्य श्री मंत्रों से गणितीय अवधारणाएं किस तरह विकसित कर लेते हैं।
1: ये अंततः प्रकृति के कारण संभव हो पाता है, जो साधना से प्राप्त होती है। आचार्य श्री कहते हैं, बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तर्क है, पर तर्क द्वंद्व उत्पन्न करता है। किंतु यदि बुद्धि को परिष्कृत और परिमार्जित करके प्रखर बना दिया जाए तो उसकी सीमा विस्तृत और व्यापक हो जाती है। तब हम चीजों को जैसी है वैसी ही देखना प्रारंभ कर देते हैं, यानी हमें सत्य का साक्षात्कार होने लगता है।
0: यह संकल्पना काफी रोचक है, इसे मुझे ठीक से समझना होगा। आचार्य श्री ने जब यह बात कही थी तब मेरा ध्यान थोड़ा भटका हुआ था, सो मैं इसे आत्मसात नहीं कर पाया था।
1: आचार्य श्री की संकल्पना को इस तरह समझा जा सकता है, जब बुद्धि परिष्कृत होती है तो उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। धारणा शक्ति बढ़ने से मेधा प्रखर हो जाती है, और जब मेधा प्रखर या परिष्कृत होती है तो प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा कहते हैं प्रकाशित बुद्धि को। प्रज्ञा की स्थिति में संवेदना इतनी सघन होती जाती है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जाता है। हमारे ऋषि महर्षि बुद्धि से प्रज्ञा तक की यात्रा के विज्ञान में पारंगत हैं।
0: लीजिए, आचार्य श्री आ गए।
2: प्रणाम आचार्य श्री।
3: आयुष्मान यशस्वी भव।
1: नदी तट पर किससे भेंट हो गई थी आपकी?
3: वत्स, तुम्हारा अनुमान सही है। नित्य क्रम से हमें थोड़ा विलंब हो गया ना। नदी तट पर आचार्य मैत्रियन से भेंट हो गई। काफी समय पश्चात उनसे भेंट हुई थी, सो चर्चा में समय का पता ही नहीं चला। उन्होंने शून्य के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। वे बोले, वैदिक पदाक्रम में शून्य का अर्थ प्रायः आकाश या रिक्त स्थान अथवा वायुमंडल जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यद्यपि गणितीय अर्थ में शून्य एक वैदिक शब्द नहीं है, किंतु दार्शनिक भाव में शून्य की सुंदर अभिव्यक्ति कठोपनिषद में मिलती है। जरा देखें यह श्लोक कितना अद्भुत है। यथा सर्वे प्रमुच्यते कामायस्य हृदय स्थितः अथ मर्त्यो अमृते भवत्यत्र ब्रह्मा समुष्णुते। अर्थात जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब मर्त्य अमर होकर अनंत अर्थात ब्रह्म के समान रूप प्राप्त कर लेता है। वे आगे बोलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में शून्य और अनंत के बीच इस सीमांत संबंध को परिभाषित करते हुए जीव अथवा आत्मा की परिकल्पना दी गई है। संदर्भित श्लोक है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेह स चानंताय कल्पते। इसका अर्थ है, बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करने पर जीव का अस्तित्व इस बिंदु पर भी उपस्थित है जिसकी अनंत के रूप में परिकल्पना की जाती है। प्रिय आपस्तंभ, मैं इन दोनों श्लोकों को गणित के प्रमेयों के रूप में रूपांतरित करने का विचार बना रहा हूं।
1: ये तो अद्भुत खोज होगी आचार्य श्री।
3: निश्चय ही। लो, मैं फिर विचार में खो गया। ध्यान सत्र का समय हो गया है, चलो सीधे ध्यान कक्ष में चलते हैं।
1: सभी लोग ध्यान कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे, संभवतः हमारी ही प्रतीक्षा हो रही होगी। चलिए। ओम ओम।

0: युवराज रोहित, लगता है तुम्हारा मन कुछ उद्विग्न है। मैं देख रहा हूं, यद्यपि हम वन में लकड़ियां एकत्रित करने के कार्य में संलग्न हैं, पर तुम्हारा ध्यान यहां नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात है मैं लकड़ियों का एक गट्ठर आश्रम भिजवा चुका हूं?
1: आप सही कह रहे हैं मुनिश्री, मेरा ध्यान भटक गया था। कई बार ऐसा हो जाता है।
0: पर ऐसा क्यों? क्या कोई समस्या है या तुम्हें अपने घर की याद सता रही है?
1: नहीं मुनिश्री, घर की याद सताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण और आत्मीय है कि जो भी यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है। कल गुरुमा ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था।
2: मैं देख रही हूँ तुम कुछ उद्विग्न हो। आजकल भोजन भी तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्या घर की याद सता रही है या यहाँ तुम्हें कोई कष्ट है?
1: कैसी बात कर रही हैं गुरु माता? यहाँ आपका व्यवहार इतना स्नेहिल, इतना ममतामय है कि घर की याद तो आ ही नहीं सकती। आचार्य श्री की पितृतुल्य निगरानी में किसी को भी कोई भी कष्ट हो ही कैसे सकता है?
2: मुझे लगा शायद तुम्हें यहाँ का भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, सो मैंने तुम लोगों के लिए मोदक और पकवान बनाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे।
1: आप निरर्थक ही चिंता कर रही हैं गुरु माता, यहाँ का भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट और रुचिकर है। मेरी उद्विग्नता को आप अन्यथा न लें।
2: तो क्या आचार्य श्री की डांट से व्यथित हो? कल संध्या में उन्होंने संभवतः तुम्हें डांटते हुए कहा था, रोहित देख रहे हो ना, गोधूली हो गई है। तुम्हें दीप मंजूषा को तैयार कर प्रज्वलित करने को कहा था ना, तुम कर क्या रहे हो?
1: नहीं गुरुमा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल संध्या में हम लोग कंदूक के खेल में इतने व्यस्त हो गए थे कि दीप प्रज्वलित करने का ध्यान ही नहीं रहा। हम में से किसी ने भी आचार्य श्री के कहे को अन्यथा नहीं लिया।
0: कोई बात तो है जो तुम हमसे छिपा रहे हो।
1: सच कहूं मुनिश्री, तो मैं चिंतित हूं।
0: चिंतित हो? किस लिए?
1: वो क्या है, आचार्य श्री ने मुझे आश्रम के आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर लगे आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने को कहा है।
0: तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है?
1: चिंतित होने की ही तो बात है मुनिश्री। मैंने गणना करके पता लगाया, अपने आश्रम के आम्र कुंज में 102 आम्र वृक्ष हैं। इन सब पर लगे आम्र फलों की गणना करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा।
0: रोहित, तुम्हें स्मरण होगा आचार्य श्री ने एक दिन पूर्व अनुमानित संख्या ज्ञात करने की विधि की चर्चा की थी।
1: हाँ मुझे स्मरण है।
0: उसके पश्चात ही आचार्य श्री ने तुम्हें आश्रम के आम्र कुंज की वृक्षों पर उपस्थित आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने का अभ्यास दिया होगा।
1: उसके बाद ही मुझे यह संख्या ज्ञात करने को कहा था। मैं तभी से चिंतित हूँ, कैसे क्या करूं?
0: देखो प्रिय, तुमने आम्र कुंज में उपस्थित आम्र वृक्षों की संख्या गणना तो कर ही ली है। अब तुम अलग अलग आकार के 5 वृक्ष चिन्हित कर लो। इसके बाद इन चिन्हित वृक्षों में से प्रत्येक वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह तुम्हें इन 5 वृक्षों पर उपस्थित फलों की 5 संख्याएं प्राप्त होंगी। इन संख्याओं का योग करके प्राप्त संख्या में 5 का भाग देने पर तुम्हें 1 वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की औसत संख्या अर्थात अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस औसत संख्या को आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों की कुल संख्या से गुणा करने पर आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर आम्र फलों की अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी।
1: अरे वाह मुनिवर, आपने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी।
0: अब से गांठ बांध लो, चिंतित रहने की जगह समस्या पर आपस में चर्चा करके हल ढूंढा जा सकता है।
1: इस सीख को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे हाँ, सुना है आप आचार्य श्री के साथ विभिन्न आश्रमों के आचार्यों के समागम में भाग लेने जा रहे हैं?
0: हाँ, ये सही है, ये आचार्य श्री का मुझ पर अनुग्रह और स्नेह ही है जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा।
1: आचार्य श्री का आप पर विश्वास अनुचित नहीं है मुनिवर, आप उनके प्रिय और सबसे योग्य शिष्य जो हैं।
0: हाँ, अब ये बातें छोड़ो, हमें जल्द ही आश्रम पहुंच जाना चाहिए, चलो।
1: हाँ हाँ, एक मिनट, मैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता हूँ, चलिए।

0: वो आ रहे हैं आपस्तम मुनि।
1: हाँ, उनसे ही ज्ञात होगा आचार्यों की सभा में क्या हुआ।
2: पहले उन्हें बधाई तो दो। आचार्यों की सभा में आचार्य बोधायन के साथ भाग लेना महान उपलब्धि है।
0: मुनिश्री बधाई
2: अत्यंत हर्षित हैं।
3: प्रणाम मुनिश्री, बताएं आचार्यों की सभा में भाग लेना कैसा अनुभव था।
4: बधाई के लिए हार्दिक धन्यवाद। ये सब आप सभी की शुभकामनाओं और स्नेह के कारण ही संभव हुआ। जहाँ तक महासभा में भाग लेने के अनुभव की बात है तो ये निश्चय ही अद्भुत था, अनिर्वचनीय।
3: वहाँ सभा में क्या हुआ मुनिश्री।
4: सभा क्या, महासभा थी वो। अनेक आचार्यों का समागम था। बहुत कुछ हुआ था वहाँ। अनेक विषयों पर, शास्त्रों पर चर्चाएं हुई, शास्त्रार्थ हुए। मूल बात ये है कि आचार्य बोधायन के शुल्ब सूत्र पर विशेष चर्चा हुई। सभी ने आचार्य श्री की खोजों उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुल्ब सूत्र को गणित के इतिहास में मील का पत्थर घोषित किया गया। कहा गया कि ये कालजयी ग्रंथ है जिसकी चर्चा शताब्दियों तक होती रहेगी।
5: वाह वाह वाह वाह,
0: बधाई श्री।
6: बधाई बधाई।
3: और कोई विशेष घटना।
4: हाँ, घटनाएं तो अनेक हैं, पर एक ज्ञातव्य है। वहां आचार्य श्री के मार्गदर्शन में 1000 ईंटों की एक उड़ते पक्षी के आकार की एक यज्ञ वेदी बनाई गई। ये वेदी वहां विद्वानों, विशेषकर ज्यामिति शास्त्रियों के लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि 10 प्रकार की ईंटों से बनी वेदी की सतह यजमान के 7.5 गुना थी और ईंटों का माप यजमान के 5वें हिस्से के बराबर था।
0: बधाई हो।
4: कृपया शांत हो, शांत हो। आचार्य श्री पधार रहे हैं, उन्हें धमाल कतई पसंद नहीं है। चलिए चलिए सभा गृह में चलिए, हमें वहाँ उपस्थित होना है। आइए
0: आइए आइए आइए आइए आइए।

तो बच्चों ये थी झलक आचार्य बोधायन के आश्रम की। बच्चों विश्व के अनेक विद्वानों, विचारकों और वैज्ञानिकों ने वेदकालीन भारत में गणित के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की गई थीं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। महान वैज्ञानिक लाप्लास ने कहा था कि ये भारत ही है जिसने 10 अंकों की संख्याओं को व्यक्त करने का अद्वितीय तरीका दिया। ये तरीका अब इतना सरल लगता है कि इसकी जबरदस्त गुणवत्ता की अनदेखी तक हो जाती है। इन आविष्कारों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो सकता है कि इतिहास के दो महान व्यक्ति आर्कमिडीज और अपोलोनियस की मेधा में दार्शनिक प्रणाली की बात नहीं आई। ऐसे ही सर मोनियर विलियम्स के विचार थे कि शताब्दियों पहले हिंदुओं ने ज्यामिति और बीजगणित के क्षेत्र में जो आविष्कार किए वे अद्भुत हैं।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंदू, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन काजल जोशी का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी अजय टिपानिया के गायन की। अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी अजय प्रसन्ना के बांसुरी वादन की। तो लीजिए पेश है सबसे पहले सितार वादन काजल जोशी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया काजल जोशी ने। अब बारी है गायन की अजय टिपानिया द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

गगन में इस तरह की झड़ी लगती है तो फिर उससे प्रीत होती है। इसी बात को साहेब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या कार्यक्रम के सभा की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 40वें वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत एवं भार्गव शौनक, देवता हैं सोमापूषा, अंतिम आधी ऋचा का अदिति और छंद है त्रिष्टुप।
1: सोमापूषणा जनना रईणाम जनना दिवो जनना पृथिव्याः जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्न मृतस्य नाभिम्। हे सोमदेव तथा पूषा देव, आप दोनों द्युलोक तथा पृथ्वीलोक के ऐश्वर्य उत्पादक हैं। जन्म लेते ही आप दोनों समस्त संसार के संरक्षक हुए हैं। देवों ने आपको अमृत का केंद्र बनाया है। इमौ देवौ जायमानौ जुषन्ते मौ तमांसी गुहता मजुष्टा आभ्यामिन्द्रः पक्व मामा स्वंतः सोमा पूषभ्याम जन दुस्रियासु। सोमदेव तथा पूषा देव के जन्म लेते ही सभी देवगण इन दोनों की सेवा करने लगे। ये दोनों देव अप्रिय अंधकार को नष्ट करते हैं। इंद्रदेव ने इन सोम तथा पूषा देवों की मदद से तरुणी धेनुओं में पक्व दुग्ध उत्पन्न किया। सोमा पूषणा रजसो विमानम सप्तचक्रम रथम विश्वमिन्वम विषुवृतम मनसा युज्युमानम तम जिन्वथो वृषणा पंच रश्मिमम। हे सोम तथा पूषा देवो, आप समस्त लोकों के उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक समस्त संसार के रक्षक सात ऋतु रूप मलमास सहित चक्रों से युक्त इच्छा से संचालित होने वाले पांच लगामों वाले रथ को हमारी ओर प्रेरित करें। दिव्यन्यः सदनम चक्र उच्चा पृथिव्यामन्यो अध्यंतरिक्षे तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुक्षुं रायस्पोषं विश्यतां नाभिमस्मे। आप में से एक ऊंचे द्युलोक में रहते हैं तथा दूसरे अंतरिक्ष और पृथ्वी में रहते हैं। वे दोनों देव हमारे लिए स्वीकार करने योग्य बहुत प्रकार के अन्नादि से पूर्ण पुष्टिकारक ऐश्वर्य प्रदान करें तथा पशुधन भी दें। विश्वान्यन्यो भुवना जजान विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति सोमा पूषणा ववतम धियम मे युवाभ्याम विश्वाह प्रतना जयेम। हे सोम तथा पूषा देवो, आप में से एक ने समस्त संसार को उत्पन्न किया है तथा दूसरे देव संपूर्ण संसार का पर्यवेक्षण करते हुए जाते हैं। हे सोम तथा पूषा देवो, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हुए हमारे कर्मों की रक्षा करें। आपकी मदद से हम शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करें। धियम पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रईं सोमो रईपतिर् दधातु अवतु देव्यदिति रनर्वा बृहद्वदेम विदथे सुवीरा।

अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 40वें वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। नमस्कार, शुभ संध्या, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की आराधना कीजिए, भक्ति के दीप जलाइए, क्योंकि आ गई है माँ जगदम्बा की उपासना की पावन बेला। चारों ओर भक्ति का वातावरण है, मंदिरों में गूंजते माता की जयकारे हैं, कहीं आरती की थाल सज रही है तो कहीं भक्तों के हृदय में माँ के आगमन की खुशियां उमंग रही हैं। ये नवरात्रि की पावन संध्या है, माँ दुर्गा की आराधना की संध्या है, श्रद्धा विश्वास और समर्पण की संध्या है।

जहाँ माँ का नाम लिया जाता है वहाँ विश्वास का दीप जल जाता है, जहाँ माँ की भक्ति बसती है वहाँ मन को नया साहस मिल जाता है।

इस पावन संध्या में अपने मन को माँ के चरणों में समर्पित कर दें, अपनी सारी चिंताएं माँ को सौंप दें और श्रद्धा से कहें, हे माँ दुर्गे, हमारे मन में सद्बुद्धि, हमारे कर्मों में अच्छाई और हमारे परिवार में प्रेम और हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखना।

और इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कुछ जीवन एक पूरी फिजा की तरह होते हैं, अपना रंग, अपनी रोशनी, अपनी खुशबू लिए। दुनिया की उसी रफ्तार के बीच, उन्हीं मुश्किलों, उन्हीं आसानियों, उन्हीं खोने पाने के बीच उनका होना एक अलग वातावरण बनाता है, जिसकी आवाज तमाम शोर के बीच भी आपको लगातार पुकारती रहती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्म 23 मार्च सन 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनकी मां एक शिक्षिका थीं। जब वो बहुत छोटे थे तभी मातृ स्नेह से वंचित हो गए। पिता गांधी जी के घनिष्ठ अनुयायी और राष्ट्रभक्त थे। डॉक्टर लोहिया को युवावस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब वो पिता के साथ गांधी जी से मिले। गांधी जी के व्यक्तित्व और सोच से वो बहुत प्रभावित हुए तथा जीवन पर्यंत गांधी जी के आदर्शों का समर्थन करते रहे। 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया। डॉक्टर लोहिया ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इंटरमीडिएट के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। स्नातक की परीक्षा सन 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास की और फिर पीएचडी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश किया। 1932 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। वहां रहते हुए उन्होंने शीघ्र ही जर्मन भाषा भी सीख ली थी और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी बचपन से ही प्रबल इच्छा थी, जो लगातार बनी रही। जब वे यूरोप में थे तब उन्होंने वहां एक क्लब बनाया जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस रखा, जिसका काम यूरोप में रहने वाले भारतीयों के भीतर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता पैदा करना था। जिनेवा में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की सभा में भी भाग लिया। दर्शक गैलरी से विरोध प्रदर्शन करने और अनेक समाचार पत्रों में उसका स्पष्टीकरण देने की घटना ने उन्हें बेहद चर्चित कर दिया। भारत वापस आने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उन्होंने आधारशिला रखी। 24 मई सन 1939 को लोहिया जी को सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करने की अपील करने और उत्तेजक भाषण देने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन युवाओं के विद्रोह के डर से अगले ही दिन वे रिहा कर दिए गए। जून 1940 में उन्हें सत्याग्रह नाव शीर्षक से लेख लिखने के आरोप में गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए कारावास भेज दिया गया। दिसंबर सन 1941 में वे फिर रिहा हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वो देश के शीर्ष नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कई बार जेल यात्राओं के बाद भी देशवासियों का आह्वान जारी रखा। वो रुके नहीं, लगातार पुकारते रहे।

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चिंता सिर्फ देश की आजादी की ही नहीं थी, बल्कि उनके पास एक चिंतन था राष्ट्र के पुनर्निर्माण का। उन्होंने देशवासियों को जागरूक किया, कुओं, नहरों और सड़कों के निर्माण के लिए कहा। उन्होंने अपने भाषण और लेखन के माध्यम से अमीर गरीब की खाई, जातिगत असमानता और स्त्री पुरुष असमानता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कृषि संबंधित समस्याओं के आपसी निपटारे के लिए हिंद किसान पंचायत का भी गठन किया। समाजवाद के बारे में लोहिया जी का अपना मौलिक चिंतन था। इस संबंध में उनकी दृष्टि समग्रवादी थी, जिसमें उनकी विश्व दृष्टि भी समाई हुई थी। इस दृष्टि में अहिंसा को जोड़कर उन्होंने समाजवाद की धारणा एकदम बदल दी। उनका मानना था कि समाज के निर्माण में मानव और पदार्थ दोनों बराबर महत्व रखते हैं। समग्रता के दृष्टिकोण से लोहिया जी जिस धरातल पर समाजवादी समाज का महल खड़ा करना चाहते थे, उसमें द्वंद्व के बजाय संतुलन पर जोर था। उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का मूल आधार गरीबी हटाना है। एक निश्चित मात्रा के अलावा वो सभी की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति करने के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला। राज्य व्यवस्था के लिए उन्होंने चौखंबा राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये चार खंबे थे, ग्राम, जिला, प्रदेश और केंद्र। देश की गरीबी के मद्देनजर उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण और लघु उद्योगों का भी पक्ष लिया। समाजवाद में समता का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। उनका मानना था कि भारत जैसे विषमता वाले देश में ये और भी ज्यादा महत्व रखता है। उन्होंने जाति, वर्ण व्यवस्था और संपत्ति मोह को समस्या की तरह देखा। वो कहते थे कि इस आंतरिक बंधन और विभेद के रहने से देश किसी भी संकट की स्थिति में एकजुट होकर एक साथ खड़ा नहीं हो सकता। राम मनोहर लोहिया एक देश द्वारा दूसरे देश को दिए जाने वाले सहायता कार्यक्रम के भी विरोधी थे। वो कहते थे कि इससे देने वाले देश का लेने वाले देश पर हमेशा दबाव बना रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे एक विश्व कोष की बात करते थे जो गरीब देशों की मदद कर सके। विश्व समाजवाद के लिए डॉक्टर लोहिया मानवतावाद को आवश्यक मानते थे। मानवतावाद का मूल दर्शन वे विश्व बंधुत्व से जन्मा हुआ कहते थे। विश्व समाजवाद की प्रेरणा शायद डॉक्टर लोहिया ने भारतीय मनीषा के वसुधैव कुटुंबकम से ही ली थी। उनका मानना था कि मनुष्य एक सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना वाला प्राणी है और वो आध्यात्मिक भी है, और ये आध्यात्मिकता स्थायी है। ये जीवन का वो क्षेत्र है जहां न केवल मनुष्य मनुष्य में पूर्ण समता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में एकता है, अद्वैत है, करुणा, ममता और अहिंसा है।

रूस की सर्वहारा क्रांति और भारत का स्वतंत्रता संग्राम 20वीं शताब्दी के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जहां रूस की क्रांति ने सर्वहारा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं भारत के स्वाधीनता संग्राम ने एशिया और अफ्रीका से साम्राज्यवाद की समाप्ति का सिलसिला आरंभ किया। राम मनोहर लोहिया स्वयं क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांति ही उनकी क्रांतिकारिता का अंतिम लक्ष्य नहीं थी। उनकी क्रांतिकारिता व्यवस्था परिवर्तन और नई सभ्यता के निर्माण के लिए थी। क्रांति का मतलब उनके लिए सिर्फ सत्ता प्राप्ति नहीं था। डॉक्टर लोहिया जिस क्रांति की बात करते हैं, उसमें सत्ता प्राप्ति और व्यवस्था परिवर्तन एक साथ चलता है। इन दोनों पर आम आदमी का नियंत्रण होता है। वास्तव में डॉक्टर लोहिया के विचार किसी एक व्यक्ति या एक विचार के सांचे पर निर्भर नहीं है। उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों के विचार स्रोतों से बहुत कुछ ग्रहण किया और अपने चिंतन से उसे मिलाकर अपनी बात कही। 20वीं सदी की तमाम विसंगतियों से निपटने के लिए डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का एक नया क्रांति दर्शन प्रस्तुत किया। ये सात क्रांतियां थीं: नर नारी समता, चमड़ी के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष, पुरानी परंपरा के आधार पर पिछड़े और अगड़े समूहों या जातियों की गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष, विदेशी दासता के विरुद्ध और जनतंत्र के आधार पर विश्व सरकार की स्थापना, निजी संपत्ति के अस्तित्व और आसक्ति के विरुद्ध आर्थिक समता और नियोजित उत्पादन, निजी जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतांत्रिक उपाय और शस्त्रों के विरुद्ध सत्याग्रह। इन सातों क्रांतियों की डॉक्टर लोहिया ने बहुत विस्तार से चर्चा की और इन्हें ही इस सदी के स्वास्थ्य का लक्षण कहा। डॉक्टर लोहिया के लिए जनता की मुक्ति का अर्थ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सभी स्तरों पर अन्याय, शोषण और गैर बराबरी से मुक्ति था, और मुक्ति की अपनी इसी परिकल्पना के तहत वे एक योद्धा की तरह आजीवन जूझते रहे। वो साम्राज्यवाद हो, सामंतवाद हो, पूंजीवाद हो या धर्म, वर्ण, संप्रदाय तथा जाति जैसी मनुष्य और मनुष्य के बीच खड़ी दीवारें। भारतीय जनगण की वास्तविक मुक्ति की अपनी परिकल्पना को लेकर वे उच्च मध्यवर्गीय नेतृत्व से अपनी राजनीति के समूचे दौर में टकराते रहे। वृहद अध्ययन और अनुभवों से समृद्ध उनका विवेक उन्हें तमाम गहरे मोह से उबारता हुआ समाजवाद की देहरी तक ले आया था। देश और समाज की चिंता मन में लिए हुए 12 अक्टूबर सन 1967 को उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। अपने विस्तृत और गंभीर चिंतन के कारण वे न केवल प्रासंगिक हैं, बल्कि तमाम आधुनिक माने जाने वाले विचारकों की तुलना में सही मायनों में बेहद उदार और आधुनिक हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।
0: पर

आप, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो का
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो कहानी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सेवा मार्ग।
1: कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सेवा मार्ग।

तारा ने 12 वर्ष तक दुर्गा की तपस्या की, न पलंग पर सोई, न केशों को सवारा और न नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से न जाती थी। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। घर के लोग उसे पागल कहते। माता समझाती, बेटी तुझे हो क्या गया है? क्या तू सारा जीवन रो रो कर काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं, पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता अब तो जो लगन लगी तो वो लगी। या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए हुए संसार से पायन कर जाऊंगी। तुम समझो मैं मर गई। इस तरह पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। ये धुंधला दीपक दीप्यमान हो गया। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्ज्वल रूप पूर्ण चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिहीन नेत्र जगमगा उठे, होंठ खुल गए, आवाज आई, तारा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांग। क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातःकाल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वो वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार पूर्ण प्रकाश का आभास हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की, किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं प्रदान हों जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वो ऐश्वर्य चाहती हूं जो सूर्य को भी मात दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा बोली, वो धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। वो सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गईं। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे और जवाहरात से लदी हूं। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ, अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ। द्वार पर नौबत बज रही थी। उसके आनंददायक सुहावने शब्द आकाश में गूंज रहे थे। द्वार पर मीलों तक हरियाली छाई थी। दासियां स्वर्णाभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थीं। तारा को देखते ही वो स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा, मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक सुंदर ऊंचा शीशा रखा है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा और चकित रह गई। उसका सुंदर रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वो कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहां की छटा देखकर वो मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंके से मतवालों की तरह झुक रहे थे। तारा ने गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वो कोमलता न थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जटित हौज था। इसमें हंस और बतख किलोने मार रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं। दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमती वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोंपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थीं। माँ को देखा, वो आंगन में बैठी चरखा कात रही थी। तारा सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी।
पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बारगी जोर से धड़ाका हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं में से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती मुझे विद्युत सिंह कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे, आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। वो क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, श्रीमती मेरा नाम अग्नि सिंह है, मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूं। वो भी जाने भी ना पाया था कि एक बारगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं, वायु सेवक हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वो शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास जाकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमय रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने शिष्ट भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं, मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूं। धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती, वो अपना अहोभाग्य समझता, सदैव के लिए उसके बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी, अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वो चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर वाटिका में एक साधु आया, सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके पास ही एक टूटी हुई बीन थी, उसी से वो प्रभावशाली स्वर निकालता जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान पर वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा, दिल में अपार अनुराग का संचार हुआ। मदमत्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए, पानी में लहरें उठने लगीं, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा, उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी होकर नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है, नहीं मैं ही हूं, मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूं। उससे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूं, अथवा एक स्वर चित्र। वो सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष, तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसकी तालों पर थिरक रही थी। वो साधु अब प्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया। जब मधुर आलाप बंद हुआ, तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था, वो उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये सुख, ये सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधुओं को महल और धन का क्या काम? नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। महाराज, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं, लेकिन मुझे सुखों की कामना नहीं, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपनी अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। नहीं तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। ये कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व टूक टूक हो गया, लज्जा से सिर झुक गया। वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, वो एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा।
बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन करने के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती। पर साधु इससे तनिक भी विचलित ना हुआ, तारा के माया जाल का उस पर कोई असर ना हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे ज्ञान हुआ है कि प्रेम पर ऐश्वर्य सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर फिर से वही कृपा दृष्टि हो, कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूं उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आवे, उसकी आंखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, वो मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, आवाज सुनाई दी, तारा मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूं, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है, लेकिन माता संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं, बताइए मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊंगी। उसका एक ही मार्ग है, पर वो है बहुत कठिन, भला तुम उस पर चल सकोगी? वो कितना ही कठिन हो मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। तो सुनो, वो सेवा मार्ग है, सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रही उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती, साधु नींद में होते तो वो उन्हें पंखा झलती, जंगली फूल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे, तारा रास्ते के कंकड़ चुनती। उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर उन्हें सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब कोई और कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता था, हाथों में गड्ढे पड़ गए, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुरझा गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था, अब वहां प्रेम का राज था। वहां अब उसे सेवा की लगन थी, जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता है और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहां अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहां के पत्थर रुई से ज्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूं, धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था, वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते, तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनको दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बौधा रोगी मनुष्य साधु के पास आशीर्वाद लेने आते थे, तारा रोगियों की सेवा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूख जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी लेने के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता था, उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन वो हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई, उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा, देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही हैं। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा तेरी अभिलाषा पूरी हुई? हां माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। तुझे प्रेम मिल गया? नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञान हुआ
कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे प्रेम आदर सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं, उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था, आकाश में तारे ऐसे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदें। वायु में चित्ताकर्षक शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगा रही थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूं। बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूं। तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे अब कोई इच्छा नहीं, मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूं। लेकिन मैं दिखा दूंगा कि योग साधकर भी मनुष्य के हृदय निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा, पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव नदी की सैर करेंगे, प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी सेवा मार्ग पर चलकर मैं अब अभिलाषाओं से पूरी हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सेवा मार्ग। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है उस्ताद आमिर खान पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जहां हम कला, संगीत और संस्कृति की उन महान विभूतियों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी साधना और सृजन से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उस विराट दुनिया में, जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर उतरते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं, हमारे विचारों को गहरा करते हैं और हमें उस अदृश्य साधना से जोड़ते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना शायद संभव ही नहीं है।
1: श्रोताओं, आज का हमारा ये कार्यक्रम कला कल्लोलिनी उस महान संगीत साधक, उस विलक्षण स्वर पुरुष और अद्वितीय शास्त्रीय गायक उस्ताद अमीर खान साहब को समर्पित है, जिनका नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उस्ताद अमीर खान साहब 15 अगस्त 1912 को जन्मे और 13 फरवरी 1974 को इस संसार से विदा हुए। उस्ताद अमीर खान साहब का जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी संगीत साधना इतनी विशाल थी कि आज भी उनकी आवाज सुनते ही लगता है कि जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो।
0: वे केवल एक महान गायक नहीं थे, वे एक ऐसी संगीत परंपरा के निर्माता थे जिसने शास्त्रीय गायन को एक नई गहराई, एक नया धैर्य और एक नया चिंतन दिया। उन्हें इंदौर घराने का प्रणेता माना जाता है और उनकी गायकी की विशिष्टता इतनी प्रभावशाली रही कि आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी, कलाकार और रसिक उनकी प्रस्तुतियों को केवल आनंद के लिए ही नहीं बल्कि सीखने और समझने के लिए भी सुनते हैं।
1: अक्सर कहा जाता है कि किसी कलाकार की महानता का पता इस बात से चलता है कि वह अपने कला जगत को क्या नया देकर जाता है। उस्ताद अमीर खान साहब ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को केवल कुछ सुंदर बंदिशें या कुछ लोकप्रिय प्रस्तुतियां ही नहीं दी बल्कि उन्होंने गायकी के माध्यम से राग को समझने और प्रस्तुत करने का एक ऐसा तरीका दिया जिसमें गहराई थी, धैर्य था, स्वर के प्रति अद्भुत सम्मान था और सबसे बढ़कर एक ऐसी आंतरिक साधना थी जो श्रोताओं को धीरे धीरे अपने साथ बहा ले जाती है।
0: श्रोताओं, उनकी गायकी में जल्दबाजी तो नहीं थी, वे राग को खोलते थे, उसे समय देते थे, उसके एक एक स्वर को पहचानते थे, उसके भावों को स्पर्श करते थे और फिर धीरे धीरे उस राग की पूरी दुनिया श्रोता के सामने उपस्थित हो जाती थी। शायद यही कारण है कि उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी को समझने के लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे धैर्य के साथ अनुभव करना पड़ता है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब का जन्म इंदौर के संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। संगीत उनके लिए बाहर से सीखे जाने वाली कोई वस्तु नहीं थी बल्कि उनके जीवन और परिवेश का स्वाभाविक हिस्सा था। उनके पिता शाहमीर खान स्वयं सारंगी और वीणा के वादक थे और संगीत की गंभीर परंपरा से भी जुड़े हुए थे।
0: घर में संगीतकारों का आना जाना लगा रहता था, महफिलें सजती थी और अलग अलग प्रकार की गायकी और वादन की परंपराओं से परिचय मिलता रहता था। एक बालक के लिए ये वातावरण किसी विद्यालय से कम नहीं था। बचपन से ही अमीर अली, जो आगे चलकर उस्ताद अमीर खान साहब के नाम से विख्यात हुए, संगीत की अनेक ध्वनियां, स्वरों और शैलियों के बीच बड़े हुए।
1: उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने अपने पिता से सारंगी सीखना प्रारंभ किया, लेकिन उनके भीतर स्वर साधना के प्रति विशेष आकर्षण था। उनके पिता ने भी उनकी इस रुचि को पहचाना और धीरे धीरे उनका ध्यान गायन की ओर केंद्रित किया।
0: और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसे कलाकार की साधना जिसने आगे चलकर अपने स्वर को ही अपना सबसे बड़ा वाद्य बना लिया। उस्ताद अमीर खान साहब की आवाज की चर्चा करते हुए संगीत प्रेमी अक्सर उसकी गंभीरता और गहराई का उल्लेख करते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी ठहरावपूर्ण शक्ति थी जो विशेष रूप से मंद्र सप्तक में सुनाई देती थी।
1: सामान्यतः किसी गायक के लिए बहुत नीचे के स्वरों में समान स्पष्टता और प्रभाव बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन अमीर खान साहब की आवाज निचले स्वरों में भी उतनी ही स्थिर, गंभीर और प्रभावशाली लगती थी। वे स्वर को केवल छूकर आगे नहीं बढ़ जाते थे, बल्कि उसे उसका पूरा स्थान देते थे।
0: यही उनके संगीत की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। उनके यहाँ स्वर किसी दौड़ का हिस्सा नहीं थे। हर स्वर की अपनी पहचान थी, अपना भाव था और राग के भीतर अपना एक विशिष्ट स्थान था।
1: उनकी गायकी को समझने के लिए यदि हम विलंबित ख्याल की बात करें तो यह कहना उचित होगा कि उस्ताद अमीर खान साहब ने विलंबित प्रस्तुति को केवल धीमी गति का संगीत नहीं रहने दिया, बल्कि उसे गहन राग विस्तार की एक साधना बना दिया।
0: श्रोताओं, विलंबित का अर्थ केवल धीरे गाना नहीं है, उसके भीतर समय को साधना पड़ता है। वहाँ हर स्वर को उचित स्थान देना होता है, हर मीड़ को उसके पूरे सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राग का विकास इस प्रकार से करना होता है कि श्रोता को कभी भी ऐसा न लगे कि संगीत कहीं रुक गया है या केवल एक ही बात दोहराई जा रही है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब इस कला के अप्रतिम साधक थे। वे राग को धीरे धीरे खोलते थे और एक स्वर से दूसरे स्वर तक पहुंचते हुए उस पूरे संगीत संसार को आपस में जोड़ देते थे।
0: उनकी गायकी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि जब वे किसी स्वर पर ठहरते थे तो उस स्वर को राग से अलग करके प्रस्तुत नहीं करते थे।

0: बाद अमीर खान साहब द्वारा गाया गया राग बिलास खानी तोड़ी उनके संगीत दृष्टि और स्वर साधना का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण माना जाता है। सुबह के समय गाए जाने वाले इस गंभीर और चिंतनशील राग में उनकी आवाज का मंद्र विस्तार विशेष रूप से प्रभावशाली दिखाई देता है।
1: जब वे धीमी गति में राग का विकास करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चित्रकार बहुत धैर्य के साथ एक विशाल चित्र की रेखाएं बना रहा हो। पहले कुछ स्वर, फिर उनका आपसी संबंध, फिर एक नए स्वर की ओर बढ़ना और उसके बाद पूरे राग के साथ उस स्वर का रिश्ता स्थापित करना।
0: ये प्रक्रिया सुनने वाले को राग के भीतर ले जाती है। यही तो महान शास्त्रीय संगीत की शक्ति है कि वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह धीरे धीरे एक अनुभव बन जाता है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी में एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी, राग के स्वभाव को समझने की उनकी असाधारण क्षमता। हर राग की अपनी प्रकृति होती है, अपना समय होता है, अपना भाव होता है, अपने विशेष स्वर होते हैं और अपने चलन होते हैं।
0: एक महान कलाकार वही है जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए राग के स्वभाव को कभी न भूले। अमीर खान साहब के यहाँ तकनीक राग पर हावी नहीं होती थी। सरगम, तान, लयकारी या मेरुखंड, इनमें से कोई भी तत्व केवल श्रोता को प्रभावित करने के लिए नहीं आता था। हर चीज राग की सेवा में उपस्थित होती थी।
1: और शायद यही कारण था कि उनकी जटिल से जटिल तान भी केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं लगती बल्कि राग के स्वाभाविक विकास का एक हिस्सा प्रतीत होती है।
0: श्रोताओं, अब संधि प्रकाश रागों में उनकी प्रस्तुति की बात हम करें तो राग मारवा का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। मारवा हिंदुस्तानी संगीत का एक अत्यंत गहन और विशिष्ट राग है जिसमें भावों की एक अलग ही दुनिया है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब जब मारवा का विस्तार करते हैं तो वे राग के स्वभाव के अनुसार अपने स्वर विन्यास को बदलते हैं। वे किसी दूसरे राग में जिस प्रकार मंद्र सप्तक का विस्तार करते हैं उसी प्रकार हर राग में नहीं करते।
0: ये उनके संगीत के प्रति गहरे अध्ययन और संवेदनशीलता को दर्शाता है। वे जानते थे कि हर राग को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता। राग की अपनी मांग होती है और कलाकार को उस मांग को समझना पड़ता है।
1: राग मारवा में उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुति को सुनते हुए यह अनुभव होता है कि वे श्रोताओं को एक एक कदम लेकर राग के भीतर ले जा रहे हैं। उनकी प्रस्तुति में स्वर के बीच के संबंध, धैवत और ऋषभ की विशिष्ट भूमिका, षडज का अत्यंत संतुलित स्पर्श और राग के वातावरण को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है।
0: एक महान संगीतकार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह केवल स्वरों को सही गाने तक सीमित न रहे बल्कि उनके बीच की अदृश्य दूरी, तनाव, आकर्षण और भावात्मक संबंधों को भी समझे। अमीर खान साहब की गायकी में ये समझ असाधारण स्तर पर दिखाई देती है।
1: उनकी प्रस्तुति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि वे राग को क्रमशः विकसित करते थे। पहले एक शांत और गहरा विस्तार, फिर धीरे धीरे नए आयाम, उसके बाद सरगम, लयकारी और फिर तानों का प्रवेश।
0: लेकिन ये सब अचानक नहीं होता था। उनके संगीत में एक स्वाभाविक प्रवाह था। एक चरण दूसरे चरण से इस प्रकार जुड़ता था कि श्रोता को बदलाव का झटका नहीं लगता था, जैसे कोई नदी शांत गति से बहते बहते धीरे धीरे अपना वेग बढ़ाती है। वैसे ही उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी में गति और ऊर्जा का विस्तार होता था।
1: उनके संगीत में सरगम का प्रयोग भी अत्यंत विशिष्ट था। सरगम केवल सा रे गा मा के उच्चारण का नाम नहीं है। जब कोई महान कलाकार सरगम गाता है तो वह स्वरों के माध्यम से राग के भीतर नए विचार प्रस्तुत करता है।
0: अमीर खान साहब की सरगम में एक अद्भुत बौद्धिकता और संगीतात्मकता का मेल दिखाई देता है। वे जटिल स्वर क्रमों को भी इस प्रकार प्रस्तुत करते थे कि उसमें गणित तो दिखाई देता था लेकिन संगीत की आत्मा कभी नहीं खोती थी। यही वह स्थान है जहां उनके मेरुखंड के प्रयोग की चर्चा आती है।
1: मेरुखंड हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी पद्धति है जिसमें स्वरों के विभिन्न संयोजनों और क्रमों के माध्यम से नए नए स्वर विन्यास बनाए जाते हैं। इसे केवल गणित मान लेना भूल होगी। गणित अनेक संभावनाएं दे सकता है लेकिन उनमें से कौन सा क्रम संगीतात्मक है, कौन सा राग के अनुकूल है और कौन सा क्रम वास्तव में श्रोताओं के मन को छू सकता है, यह निर्णय कलाकार की संवेदना करती है।
0: उस्ताद अमीर खान साहब ने मेरुखंड को अपनी गायकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वे स्वरों के संयोजन से जटिल ताने बनाते थे, लेकिन उनके तानों में केवल चमत्कार नहीं होता था, उनमें राग की पहचान सुरक्षित रहती थी।
1: यहाँ हमें केवल एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, शास्त्रीय संगीत में तकनीकी क्षमता और संगीतात्मकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई कलाकार बहुत तेज ताने ले सकता है, जटिल लयकारी कर सकता है, अनेक स्वर संयोजन प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यदि उसमें राग का भाव और संगीत की आत्मा नहीं है तो वह प्रस्तुति केवल कौशल का प्रदर्शन बनकर ही रह सकती है।
0: उस्ताद अमीर खान साहब की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि उनकी तकनीक हमेशा उनके संगीत के साथ जुड़ी रही। उनके ताने जटिल थीं, उनकी सरगम अद्भुत थी, उनका लय बोध असाधारण था, लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा राग बोध था।
1: और जब वे तेज तानों की ओर बढ़ते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि धीमी प्रस्तुति समाप्त हो गई और अब कोई दूसरा संगीत शुरू हो गया है, बल्कि ऐसा लगता था कि वही राग जो अभी तक शांत और गंभीर रूप में हमारे सामने था, अब अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को प्रकट कर रहा है।
0: यही एक महान प्रस्तुति का अनुपम सौंदर्य है। उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी में धीमी गति और तेज गति, गंभीरता और ऊर्जा, चिंतन और कौशल, ये सभी विरोधी तत्व नहीं थे, बल्कि एक ही संगीत यात्रा के अलग अलग पड़ाव थे।
1: उनकी प्रसिद्ध बंदिशों में राग मारवा की गुरु बिन ज्ञान न पावे का विशेष स्थान है। इस प्रस्तुति में वे बंदिश के शब्दों और राग के भाव को स्थापित करने के बाद जिस तरह से तेज सरगम और तानों की ओर बढ़ते हैं, वह उनकी गायकी के अद्वितीय विस्तार को भी सामने लाता है।
0: उनके तानों में दोहराव कम मिलता है, वे एक ही प्रकार के स्वर विन्यास को बार बार दोहरा कर श्रोता को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते। हर नई तान एक नया विचार लेकर आती है, यही रचनात्मकता उन्हें केवल एक अच्छे गायक से कहीं अधिक एक महान संगीत विचारक बनाती है।
1: उस्ताद अमीर खान साहब को अक्सर म्यूजिशियंस ऑफ म्यूजिशियन अर्थात संगीतकारों का संगीतकार कहा जाता है, और यह एक बहुत बड़ा सम्मान है।
0: इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी गायकी केवल संगीतकारों के लिए ही थी, उनकी आवाज और उनका संगीत सामान्य श्रोता को भी गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन साथ ही संगीत को जानने वाले कलाकार उनकी गायकी में उस सूक्ष्म बात को भी पहचानते हैं जिन्हें साधारण रूप से सुनने पर शायद हमें तुरंत समझना कठिन हो।
1: एक विद्यार्थी उनकी स्वर योजना को सुन सकता है, एक गायक उनके राग विस्तार का अध्ययन कर सकता है, एक संगीतकार उनकी लयकारी की संरचना को समझ सकता है, और एक सामान्य श्रोता उनकी आवाज की गहराई में खो सकता है। बस यही किसी महान कलाकार की व्यापकता है।
0: उनके जीवन की यात्रा भी हमें बताती है कि महानता हमेशा प्रारंभ से ही तालियों और प्रसिद्धि के साथ नहीं आती। अमीर खान साहब जब मुंबई पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, तब कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए, तो प्रारंभिक दौर में उन्हें वैसी स्वीकृति नहीं मिली जिसकी आज हम कल्पना करते हैं।
1: लेकिन एक सच्चा साधक बाहरी प्रतिक्रिया से अपनी साधना का निर्णय नहीं करता। उन्होंने संगीत को और गहराई से समझा, अपनी शैली को विकसित किया और अपने स्वर के साथ लगातार प्रयोग करते रहे। यही निरंतर साधना आगे चलकर उनकी पहचान बनी।
0: उनका कुछ समय रायगढ़ रियासत में भी बीता, जहां संगीत की समृद्ध परंपरा थी। जीवन के विभिन्न स्थानों पर रहने और अलग अलग संगीतकारों से संपर्क ने उनकी दृष्टि को व्यापक बनाया। दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई जैसे शहरों में संगीत के विविध वातावरण से जुड़ने का उन्हें अवसर मिला।
1: लेकिन इन सब अनुभवों के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी अपनी विशिष्ट गायकी। उन्होंने किसी की केवल नकल नहीं की। महान कलाकार परंपरा से सीखता है, अनेक स्रोतों से ग्रहण करता है, लेकिन अंततः अपनी स्वयं की आवाज खोजता है, और उस्ताद अमीर खान साहब ने भी यही किया।
0: उन्होंने संगीत को केवल संगीत सम्मेलनों और शास्त्रीय मंचों तक ही सीमित नहीं रखा। भारतीय फिल्मों के माध्यम से भी उनकी आवाज व्यापक जनसमूह तक पहुंची। बैजू बाबरा, शबाब और झनक झनक पायल बाजे जैसी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की उनकी भागीदारी ने आम श्रोताओं को उनकी कला से परिचित कराया।
1: यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि फिल्म संगीत के माध्यम से शास्त्रीय संगीत की सुंदरता उन लोगों तक भी पहुंचती है जो शायद कभी किसी लंबी शास्त्रीय महफिल में न गए हों। उस्ताद अमीर खान साहब ने फिल्मों में भी अपने संगीत की गरिमा बनाए रखी। उनका उद्देश्य केवल लोकप्रिय होना नहीं था बल्कि शास्त्रीय संगीत की आत्मा को व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाना था।
0: मित्रों, आज जब हम मनोरंजन की दुनिया में बहुत तेज गति से अभ्यस्त हो चुके हैं, तब उस्ताद अमीर खान साहब का संगीत हमें धैर्य का महत्व याद दिलाता है। उनकी गायकी सुनते समय हमें कुछ देर रुकना पड़ता है।
1: तुरंत किसी ऊंचे स्वर, तेज तान या आकर्षक प्रभाव की प्रतीक्षा छोड़कर हमें संगीत के साथ चलना पड़ता है, और शायद यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी देन है कि वह हमें सुनना सिखाती है, केवल कानों से नहीं बल्कि मन से सुनना।
0: एक स्वर कहाँ से आया, कहाँ ठहरा, किस स्वर की ओर गया और राग के वातावरण में उसने क्या परिवर्तन किया, इन सब बातों को महसूस करना।
1: श्रोताओं, संगीत की दुनिया में ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जिनके बारे में वर्षों बाद भी नई पीढ़ियां लगातार अध्ययन करती रहती हैं। उस्ताद अमीर खान साहब का संगीत आज भी जीवित है क्योंकि उसमें केवल अपने समय की छाप नहीं है, उसमें एक ऐसी गहराई है जो हर युग के संगीत प्रेमी को आकर्षित कर सकती है।
0: आज भी जब कोई विद्यार्थी विलंबित ख्याल की संरचना समझना चाहता है, जब कोई गायक मंद्र सप्तक की शक्ति और स्थिरता को सुनना चाहता है, जब कोई कलाकार मेरुदंड के संगीतात्मक प्रयोग को समझना चाहता है, या जब कोई रसिक राग के गहन विस्तार में डूबना चाहता है, तो उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन जाती है।
1: उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि वे संगीत को निरंतर आत्म विकास की प्रक्रिया मानते थे। एक कलाकार के लिए कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, हर राग में नई संभावना होती है, हर स्वर में नया भाव हो सकता है और हर प्रस्तुति में एक नई खोज संभव है।
0: शायद इसी कारण उनकी गायकी में हमें जड़ता नहीं मिलती। वे परंपरा का सम्मान करते हैं परंतु उसके भीतर अपनी रचनात्मक दृष्टि भी विकसित करते हैं।
1: उनके शिष्यों और उनके संगीत के प्रभावित कलाकारों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पंडित अमरनाथ जैसे शिष्यों ने उनकी गायकी की अनेक विशेषताओं को आत्मसात किया और अपनी स्वयं की आवाज तथा व्यक्तित्व के साथ उसे आगे बढ़ाया।
0: यही किसी सच्चे गुरु की सफलता है कि उसका शिष्य उसकी प्रतिकृति ना बने बल्कि उससे सीखकर अपनी राह बनाए। उस्ताद अमीर खान साहब की संगीत परंपरा का प्रभाव केवल प्रत्यक्ष शिष्यों तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी गायकी ने अनेक गायकों और संगीत प्रेमियों को प्रभावित किया और आज भी इंदौर घराने की चर्चा उनके नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती।
1: उस्ताद अमीर खान साहब को संगीत के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया।
0: श्रोताओं, ये सम्मान उनके योगदान की औपचारिक पहचान अवश्य थे परंतु उनकी वास्तविक पहचान उनके स्वरों में थी। कभी कभी लगता है जैसे महान कलाकार पुरस्कारों को भी अर्थ प्रदान करते हैं।
1: उस्ताद अमीर खान साहब के साथ भी यही बात लागू होती है। उनका सबसे बड़ा पुरस्कार शायद ये है कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी उनका संगीत सुनने वाले के मन में प्रश्न, आश्चर्य, शांति और प्रेरणा सब एक साथ जगाता है।
0: 13 फरवरी 1974 को एक सड़क दुर्घटना में उनका असमय निधन हो गया। उनका जाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए एक बड़ी क्षति थी। एक ऐसा कलाकार जिसकी साधना अभी भी नई नई दिशाओं में विकसित हो रही थी, अचानक हमारे बीच से चला गया।
1: लेकिन संगीत की यही विशेषता है कि शरीर चला जाता है, आवाज रिकॉर्डिंग में रह जाती है, और उससे भी आगे कलाकार की सोच उन लोगों के भीतर जीवित रहती है जो उसे सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं।
0: उस्ताद अमीर खान साहब आज हमारे बीच भौतिक रूप से मौजूद नहीं है लेकिन उनका स्वर आज भी जीवित है। वह स्वर आज भी किसी सुबह बिलास खानी तोड़ी की गंभीरता में सुनाई देता है, किसी संध्या मारवा की गहराई में महसूस होता है, किसी विद्यार्थी की रियाज में प्रेरणा बनकर उपस्थित होता है और किसी संगीत प्रेमी के मन में ये प्रश्न जगाता है कि संगीत की गहराई आखिर कितनी विशाल हो सकती है।
1: और जब हम उस्ताद आमिर खान साहब को याद करते हैं तो हमें केवल एक महान गायक को याद नहीं करना चाहिए, हमें उस साधना को भी याद करना चाहिए जिसमें सफलता से अधिक महत्वपूर्ण था स्वर की सच्चाई। हमें उस धैर्य को भी याद रखना चाहिए जिसमें राग को जल्दबाजी में समाप्त नहीं किया जाता बल्कि उसे खुलने का समय दिया जाता है।
0: बिल्कुल, हमें उस रचनात्मकता को भी याद करना चाहिए जिसमें जटिल गणित भी संगीत बन जाता है, और हमें उस विनम्रता को भी समझना चाहिए जो एक सच्चे कलाकार को जीवन भर विद्यार्थी बनाए रखता है।
1: श्रोताओं, हम उनके संगीत से यही सीख सकते हैं कि किसी भी कला में गहराई पाने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर साधना चाहिए। दुनिया की तेज रफ्तार हमें हर चीज जल्दी पाने के लिए प्रेरित करती है लेकिन महान कला हमें ठहरना सिखाती है।
0: उस्ताद आमिर खान साहब का संगीत भी हमें ठहरना सिखाता है, एक स्वर को चुनना, उसके भीतर उतरना, उसके अगले स्वर से संबंध को महसूस करना और फिर धीरे धीरे उस पूरी संगीत यात्रा का हिस्सा बन जाना।
1: वे सचमुच एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें केवल महान गायक कहना शायद पर्याप्त नहीं है, वे स्वर के चिंतक थे, राग के साधक थे, परंपरा के संवाहक थे और अपनी विशिष्ट संगीत दृष्टि के निर्माता भी थे।
0: उनकी गायकी में ज्ञान था, अनुभव था, तकनीक थी, कल्पना थी और सबसे बढ़कर संगीत के प्रति असीम प्रेम था। यही कारण है कि उन्हें संगीतकारों का संगीतकार कहा जाता है, एक ऐसा कलाकार जिसे जितना अधिक सुना जाए उतना ही अधिक नया अनुभव हमें मिलता है।
1: तो श्रोताओं, आइए आज इस महान स्वर साधक को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, याद करें उस गंभीर, गहरे और अनंत स्वर को जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दी।
0: याद करें उस कलाकार को जिसने विलंबित ख्याल को धैर्य और चिंतन की अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए याद करें उस संगीतज्ञ को जिसने मेरुखंड जैसे जटिल स्वर विन्यासों को भी राग की आत्मा से जोड़े रखा।
1: और याद करें उस महान संगीत साधक को जिसने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया।
0: उस्ताद आमिर खान साहब, आपका शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपकी आवाज आज भी जीवित है।
1: आपके स्वर आज भी रागों की उस अनंत यात्रा पर चल रहे हैं जहां समय का कोई बंधन नहीं, जहां साधना कभी समाप्त नहीं होती और जहां एक सच्चा कलाकार अपने संगीत के माध्यम से हमेशा अमर हो जाता है।
0: उनकी जीवन यात्रा भले ही वर्षों में सीमित दिखाई देती हो लेकिन संगीत की दृष्टि से ये एक ऐसी अनंत यात्रा है जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक सुनाई देता रहेगा।
1: उस्ताद आमिर खान साहब को शत शत नमन।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ कला कल्लोलिनी में अब हमें दीजिए अनुमति,
1: फिर मिलेंगे कला, संस्कृति और संगीत की एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
1: और मैं विजयकांत नायक।
0: कार्यक्रम का लेखन मनीषा चतुर्वेदी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार की जुगलबंदी।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन जुगलबंदी। कलाकार हैं आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार।

0: ये गायन जुगलबंदी हुई भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में।
1: राधे राधे, प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, गुणीजनों को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे लिए आज एक बहुत ही खास अवसर है, क्योंकि भोपाल की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। ग्वालियर का जन्म, भोपाल में आगे की सारी परवरिश, और 14-15 साल की थी तब पुणे चली गई थी आगे गाना सीखने के लिए। तो बचपन से ही भारत भवन एक बहुत ही खास मंच रहा है मेरे लिए। बड़े बड़े उस्तादों को, पंडितों को, गायकों को सुना है, उनसे इंस्पायर हुए, ऐसा लगा कि यहाँ पे गाना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए। तो आज गुरु कृपा से, परमेश्वर कृपा से आज यहाँ हैं। कई बार आती गई भारत भवन गाने के लिए, आज फिर से हैं हम लोग यहाँ पे। आज आस्था, मेरी परम सखी, हम लोग दोनों यहाँ पे हैं। तो आज हम लोग राग मेघ से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पारंपरिक बंदिश है मध्य विलंबित झपताल में, जिसके बाद द्रुत बंदिश पंडित अरुण भादुरी जी की रचना है। आज हमारे लिए संगत में रामेंद्र जी हैं, राजेंद्र भाई हैं, महेश भाई हैं। हम लोग शुरू करते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं बोकारो चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल्स पर रेडियो रिपोर्ट।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आज़ाद हिंद। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सरजू प्रसाद सिंह के जीवन पर।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं भारत की महान क्रांति परंपरा से और उन विभूतियों से जिन्होंने अपने पराक्रम से समय की धार को बदल कर रख दिया और हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज हम सारे विश्व के सामने सर उठा के जीते हैं।
2: इसी तारतम्य में आज बात करते हैं सरजू प्रसाद सिंह की, जिनका जन्म 21 फरवरी 1840 को हुआ था। श्रोताओं, जबलपुर मध्य प्रदेश के उत्तर में उस समय एक जागीर थी जिसका नाम विजय राघवगढ़ था। विजय राघवगढ़ और मैयर एक ही शासक के अधीन थे। जब जागीर का बंटवारा दो भाइयों में हुआ तो एक को मैयर और दूसरे को विजय राघवगढ़ मिला।
1: विजय राघवगढ़ के जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर कंपनी सरकार ने रियासत को प्रतिपालय अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत लेकर वहां कंपनी सरकार का एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया। ये व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि रियासत के उत्तराधिकारी सरजू प्रसाद सिंह की अवस्था उस समय केवल 5 वर्ष की थी
2: और सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बालक सरजू प्रसाद 17 वर्ष के तरुण हो चुके थे। वो क्रांतिकारी स्वभाव के किशोर थे और अंग्रेजों से उन्हें घृणा थी। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने बंदूक और तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था और उन्हें घुड़सवारी में भी महारत हासिल थी और उनमें नेतृत्व के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे।
1: हम सरजू प्रसाद जी के बारे में और बातें करेंगे, आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

0: सरजू प्रसाद सिंह ने आसपास के जागीरदारों को मिलाकर 3,000 प्रशिक्षित सैनिकों की एक सेना खड़ी कर ली थी और विद्रोह के पथ पे उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि कंपनी सरकार द्वारा नियुक्त तहसीलदार को मारकर रियासत का प्रशासन पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। और दूसरा जो काम उन्होंने किया वो ये था कि कंपनी सरकार की घुड़सवार सेना पे अधिकार करके सवारों को मार के भगा दिया और उनके स्थान पे अपने घुड़सवार नियुक्त कर दिए।
1: सरजू प्रसाद सिंह की संगठित सेना को खतरा ये था कि मिर्जापुर मार्ग से आकर अंग्रेजी सेना उस पर आक्रमण कर सकती थी। उसने मिर्जापुर सड़क पर अपना अधिकार करके इस खतरे को भी दूर कर दिया। अंग्रेजी सेना के कैप्टन उले के नेतृत्व में 1857 को एक सेना ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह से मुकाबला करने के लिए भेजी गई।
0: उस सेना की सहायता के लिए 4 नवंबर को मेजर सुलिवान के नेतृत्व में एक और सेना भेजी गई। सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने उन दोनों अंग्रेजी सेनाओं को छिन्न भिन्न करके उनके हथियार लूट लिए। इस संयुक्त सेना को तहस नहस करने के बाद सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने 6 नवंबर को मुरवाड़ा के समीप एक अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया और घायल होकर अंग्रेज सेनापति भाग निकला। इसके आगे क्या हुआ जानेंगे इस गीत के बाद।

0: अपनी इन निरंतर पराजयों से खिन्न होकर अंग्रेजों ने एक विशाल सेना 14 नवंबर को जबलपुर से भेजी। इस सेना के मेजर जॉन किंग के मारे जाने के कारण सेना स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इसके बाद एक और विशाल सेना जबलपुर से ही कैप्टन उले के नेतृत्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजी गई।
1: इस सेना का सामना सरजू प्रसाद के सहयोगी ठाकुर देवी सिंह ने किया और वे पराजित होकर गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों ने अपनी सहायता के लिए रीवा नरेश की सेना बुलवाई। बड़ी मुश्किल से रीवा और कंपनी सरकार की संयुक्त सेना विद्रोहियों का दमन कर सकी। सरजू प्रसाद सिंह को कई वर्षों बाद अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार किया।
0: ठाकुर देवी सिंह को फांसी का दंड दिया गया और सरजू प्रसाद सिंह को आजीवन कारावास, और विद्रोही तरुण सरजू प्रसाद सिंह ने जीवन भर जेल की कोठरियों में सड़ने के स्थान पर जीवन मुक्ति का उपाय अपनाया। एक दिन उन्होंने अपने पेट में कटार मारकर आत्म बलिदान का पथ अपना लिया
1: और इस तरह शहीद हुआ एक और देशभक्त आजादी की बलिवेदी पर। हमारा उनको सादर नमन।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जी में से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
2: और अब समय है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
3: और मैं हूं आपके रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया।
2: और आज हम अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में बात करेंगे महान देशभक्त, अजीज शायर और शब्द शिल्पी बहादुर शाह जफर की। हमने अपने पिछले अंक में भी बहादुर शाह जफर के बारे में बात की थी, लेकिन आज के एपिसोड में हम सृजन धर्मी बहादुर शाह जफर की शायरी के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। श्रोताओं, बहादुर शाह जफर केवल बादशाह ही नहीं, अपने सीने में एक फनकार का दिल रखने और लाल किले और दिल्ली के साहित्यिक वातावरण के कारण साहिब दीवान शायर भी थे।
3: बहादुर शाह जफर के दादा शाह आलम स्वयं अच्छे शायर और सृजनात्मक लेखक भी थे। वे आफताब एवं शुआ के साहित्यिक नामों से शायरी किया करते थे। उन्होंने एक दास्तान भी लिखी थी। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि शायरी बहादुर शाह जफर को विरासत में मिली थी। वे फितरे यानी प्राकृतिक शायर थे। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान होने और गहन साहित्यिक अध्ययन के कारण बाल अवस्था से ही शेरगोई यानी शायरी का आगाज कर दिया था। वे उर्दू के अलावा अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी शायरी किया करते थे। जिस समय बहादुर शाह जफर ने शायरी की शुरुआत की, उस समय उर्दू शायरी बहुत विकसित हो चुकी थी। उसमें विभिन्न विधाओं, विषयों के समावेश के साथ भाषाई और कलात्मक रूप भी खासा निखार पैदा हो चुका था। वली दखनी, सौदा, मीर, मीर दर्द, कुली कुतुब शाह और सिराज औरंगाबादी के कलाम यानी रचनाओं ने उर्दू शायरी के स्तर को बुलंद करके शायरी को हर खासो आम की दिलचस्पी और आकर्षण का केंद्र बिंदु बना दिया था।
2: स्वयं बादशाह बहादुर शाह जफर के अपने युग में शाह नसीर, शेख इब्राहिम जौक, मिर्जा गालिब, मोमिन खां, मोमिन दहलवी आदि की शायरी ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। ये सभी उर्दू शायर न केवल अपनी पहचान, अपने मकाम रखते थे, बल्कि उनके शागिर्दों की भी बड़ी तादाद शेर व शायरी में मसरूफ थी। समाज में शायरी सुनने समझने का चलन आम था। शायरों को इज्जत और कद्र की नजर यानी तारीफ की नजर से देखा जाता था। शाही दरबारों से संलग्न होने के कारण उनका शुमार प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय व्यक्तियों में होता था। शायरी एक शरीफाना शौक समझा जाता था, एक अभिव्यक्ति की ही नहीं, एक जहनी तफरी यानी मनोरंजन का सशक्त माध्यम भी थी शायरी।
3: दोस्तों, जो बादशाह शायर नहीं थे, वो भी अपने दरबार में शायरों को शामिल करके अपने साहित्य प्रेमी होने का प्रमाण प्रस्तुत किया करते थे। दरबारों में मुशायरों का आयोजन किया जाता था। शायरों को शाही खिताब और मान सम्मान, इनाम और वजीफे यानी वित्तीय सहायता भी दी जाती थी। जो बादशाह शायरी का शौक रखते थे, वे अपनी रचनाओं की गुणवत्ता, भाषाई और फनी मेयार को बनाए रखने के लिए किसी सीनियर मुस्तनद उस्ताद शायर को अपना कलाम दिखाते, मशवरा करते या ज़रूरी इस्लाह लेते थे। बहादुर शाह जफर ने भी पहले शाह नसीर को, फिर जौक दहलवी और मिर्जा गालिब को अपना उस्ताद बनाया। जौक और गालिब उनके दरबार के शाही शायर थे, जिन्हें इनाम और इकराम के साथ तनख्वाह भी दी जाती थी। इन दोनों शायरों ने बहादुर शाह जफर की शान में कसीदे भी लिखे और अपने शेरों के जरिए अपनी निजी समस्याएं भी समाधान के लिए पेश की।
2: दरबारी शायर लाल किले में बहादुर शाह जफर की अध्यक्षता में आयोजित शाही मुशायरों में अपना कलाम प्रस्तुत करके दाद हासिल करते थे। बहादुर शाह जफर के कलाम की शब्दावली और उनकी शायरी का लहजा सादा मगर पुरअसर था। उर्दू के प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली लिखते हैं, जफर का तमाम दीवान जबान की सफाई और रोजमर्रा की खूबी से अव्वल से आखिर तक यकसा है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से एक दूसरे को अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ प्रभावित जरूर करता है। यही मामला बहादुर शाह जफर का भी है कि उन्होंने जहां अपने हालात से और अपने उस्तादों से जो कुछ सीखा, उसे न केवल अपनी शायरी में पेश कर दिया, बल्कि अपने व्यक्तित्व, स्वच्छ मृदुल स्वभाव, तहजीबी संस्कारों, शाही अदबी जौक और ज्ञान से अपने दरबारियों, शहर के विद्वानों और अपने उस्तादों को भी प्रभावित किया था।
3: मौलवी अब्दुल हक ने जब सर सैयद अहमद खां से उस्ताद ज़ौक दहलवी और शागिर्द बहादुर शाह जफर के हवाले से गुफ्तगू की तो सर सैयद अहमद खां ने कहा था, वो ज़ौक बादशाह का कलाम तो क्या लिखता, किले के ताल्लुक से खुद ज़ौक को ज़बान आ गई। बहादुर शाह जफर के साहित्यिक स्वभाव एवं संरक्षण के कारण हिंदुस्तानी साहित्य को भली भांति फलने फूलने के सुअवसर प्राप्त हुए। अदबी माहौल को तरक्की करने में फरोग हासिल हुई। उर्दू के मशहूर शायर प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराग गोरखपुरी ने अपनी किताब अंदाजे में बहादुर शाह जफर के हवाले से लिखा है, दोस्तों, उर्दू शायरी की तारीख और रिवायतों में जो फ़ायदे उस्तादों ने शागिर्दों से उठाए हैं वो हमेशा सीग़-ए-राज में रहे। और जफ़र कोई मामूली शागिर्द नहीं था, वो ज़ौक की शायरी और शायराना ज़हनियत की फ़िज़ा बन गया था। बहादुर शाह जफ़र के मिजाज और शहाना और शरीफाना वक़ार और व्यक्तित्व का गुणगान जहां अंग्रेज़ों ने किया है, वहीं सभी भारतीय उन्हें इज्जत और सम्मान की नज़र से देखते थे और उनके साहित्यिक प्रतिभाओं को कई साहित्यकारों के साथ साथ खुद उनके उस्तादों ज़ौक और गालिब ने भी उनकी सराहना की है।
2: उस्ताद गालिब चांद को संबोधित करते हुए बहादुर शाह से संबंधित अपने कसीदे का आगाज इस तरह करते हैं, हाँ महे नौ सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक करके कर रहा है सलाम, जानता हूं कि उसके फैज से तू फिर बना चाहता है माहे तमाम, है मुझे आरजुए बख्शिशे खास, गर तुझे है उम्मीद रहमत आम, कौन है जिसके दर पे नासिया सा है महो महर व जोहरा बहराम, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नामे शहनशाह बुलंद मुकाम, क़िबलिये चश्मुदिल बहादुर शाह, मज़हरे ज़ुल जलालो वल इकराम, जिसका हर फैल सूर तेजाज, जिसका हर कौल मानिए इलहाम, ऐ तेरा लुत्फ जिंदगी अफजा, ऐ तेरा एहद फरुखी फरजाम।
3: दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब अपने एक और कसीदे में बहादुर शाह की तारीफ कुछ इस तरह से करते हैं, सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, मेहरे आलम ताप का मंजर खुला, बज़्म सुल्तानी हुई आरास्ता, काबे अमनो अमा का दर खुला, शाह रोशन दिल बहादुर शाह के हैं, राज हस्ती उस पे सरता सर खुला। गालिब ने बादशाह के लिए जहाँ कसीदे और सहरे लिखे, वहीं अपनी तनख्वाह बढ़ाने और उसे पाबंदी से दिए जाने की गुजारिश भी की है। कहते हैं, ऐ शहनशाह आसमां और रंग, ऐ जहाँ दारे आफ्ताब आसार, था मैं एक नवाए गोशा नशीं, था मैं एक दर्द मंद सीना फगार, तुमने मुझको जो आबरू बख्शी, हुई मेरी वो गर्मी ए बाजार, के हुआ मुस्सा जर्रे नाचीज, रूशना से सवाबितो सैयार, आपका बंदा और फिरू नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमा, ता ना हो मुझको जिंदगी दुश्वार, खत्म करता हूँ अब दुआ पे कलाम, शायरी से नहीं मुझे सरोकार, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000।
2: दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने अपने उस्ताद ज़ौक दहलवी को खाकानी हिंद का खिताब अता किया था। ज़ौक ने अपने शिष्य बादशाह बहादुर शाह की तारीफ में सबसे ज्यादा कसीदे लिखे थे। अपने एक कसीदे में वो उनकी तारीफ बयां करते हुए कहते हैं, यूं कुर्सी जर पर है तेरी जलवा नुमाई, जिस तरह के मुसफो सर रहले तिलाई, रखता है तो वो दस्त सखा सामने जिसके, है बहर भी कश्ती बकफ अज बहरे गदाई, गुमराह को हिदायत जो तेरी राह पे लाए, रहजन भी अगर हो तो करे रहनुमाई। और फिर ज़ौक दहलवी आखिर में बादशाह को दुआ देते हैं, हर साल शाह होवे मुबारक ये तुझे ईद, तू मसनदे शाही पे करे जलवा नुमाई।
3: दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने गालिब की तरह फारसी आमेज जबान में शेर नहीं कहे। उनका अंदाज ऐसा सीधा साधा सुलझा हुआ था जो कि पढ़ने सुनने वालों को फौरन मुतासिर कर देता था। बहादुर शाह का ये विचार सही है कि जफर शेर व सुखन से राज दिल क्यों करना हो जाहिर, जफर शेर व सुखन से राज दिल क्यों करना हो जाहिर, कि ये मजमून सारे दिल के अंदर से निकलते हैं। हमारा दिल अजब हसरत कदा है, हमारा दिल अजब हसरत कदा है, भरे हैं सैकड़ों अरमान जिसमें। जब तलक दम है रहेंगे यूं ही गम साथ के साथ, जब तलक दम है रहेंगे यूं ही गम साथ के साथ, देखना जाएंगे गम और ये दम साथ के साथ।
2: दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने जिंदगी के अनुभवों को इस तरह अपने शेरों में कुछ पेश किया है। अक्ल पे नाज है, कुदरत पे नजर किसको है, अक्ल पे नाज है, कुदरत पे नजर किसको है, सबको फिक्र आज की है कल की।

0: कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बात करनी हमें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी हमें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।
1: और ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएं।
0: क्या बात है, वाह।
1: वाकई जीना उन्हीं का है भला दुनिया में, वाकई जीना उन्हीं का है भला दुनिया में, है जफर करते हैं जो काम भलाई के लोग। जफर अगला जमाना था कुछ और, इस जमाने की बातें कुछ और ही हैं। जो दिल पे है गुजरती कुछ दिल ही जानता है, बतलाऊं ऐ जफर क्या इस दिल का हाल क्या है। हाय कहिए किसे यहां अपना, हाय कहिए किसे यहां अपना, कौन अपना है और कहां अपना।
0: क्या बात है, वाह। दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग अपने शेर में किया है। कुछ शेर आप मुलाहिजा फरमाइए। रतियां गुजारू रोवत रोवत, दिन को गुजारू आहा खींच, मेरे मन की मोसे न पूछो, पूछो मेरी बिपता से। मन के अंदर पिया कलंदर, मन के अंदर पिया कलंदर, तेरे जफर वो आन बसा, काम पड़ो जब वासु थारो, काम रहा क्या दुनिया से। बहादुर जफर ने दुनिया को जिस नजर से देखा, समझा और भोगा, वैसा ही उसे अपनी शायरी में पेश कर दिया। उनके कलाम में पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की कहानियां, अंग्रेज शासकों के जुल्म सितम की दास्तानें और दिल्ली की तबाही और बर्बादी के हालात बड़ी सच्चाई और दर्दनाक अंदाज में बयान किए गए हैं। कुछ मिसालें उदाहरणार्थ हम प्रस्तुत करते हैं। लिखते हैं कि जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौरे शम्मा के रोते संजुमन से चले। कौन नगर में आए हम, कौन नगर में बासे हैं, कौन नगर में आए हम, कौन नगर में बासे हैं, जाएंगे अब कौन नगर को, मन में अब हिरासे हैं, मन में अब हिरासे हैं।
1: और शाम को गुंचा खिला था चौक के बाजार में, शाम को गुंचा खिला था चौक के बाजार में, अब वहां पर या खुदा लाखों का सर जाता रहा। आगू था ये शहरे दिल्ली, अब हुआ उजड़ा दयार, क्यों जफर ये क्या हुआ, जौवन किधर जाता रहा। नहीं हाल दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल।
0: क्या बात है, वाह।
1: न था शहर दिल्ली ये था चमन, कहो किस तरह का था यहाँ अमन, जो खिताब था वो मिटा दिया, फकत अब तो उजड़ा दयार है।
0: क्या बात है, वाह। दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने अपनी गजलों में अपने दिल का गम ही नहीं, अपने वतन यानी हिंदुस्तान से दिली लगाव को इस तरीके से पेश किया है कि उसे सुनकर हर देश प्रेमी का दिल द्रवित हो उठता है। उनकी एक गजल के चंद शेर हम आपको सुनाते हैं। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। बुलबुल को पासबा से ना सयाद से गिला, बुलबुल को पासबा से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसलें बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गजमी भी ना मिल सकी कुए यार में।
1: वाह दोस्तों, जिस वक्त बहादुर शाह जफर की साहित्यिक चेतना जागी और उनके अदबी शऊर ने आंखें खोली, उस समय तक दिल्ली में उर्दू शायरी विकास के कई पड़ाव तय करके अपनी खास पहचान बना चुकी थी, जिसे दहलवियत या दिल्ली स्कूल का नाम दिया जाता है। बाहरी हमलावरों के हमलों के कारण जब दिल्ली के कई फनकार, कलमकार एवं शायर अदीब फैजाबाद और लखनऊ पलायन करके वहीं रह गए, तो पलायन करता शायरों एवं स्थानीय शासकों एवं लखनवी शायरों के मेलजोल और अवध की हुकूमत की वित्तीय स्थिति मजबूत होने और वहां के शासकों की गहरी साहित्यिक दिलचस्पी के कारण लखनऊ में दिल्ली की शायरी से हटकर एक नए अंदाज में शायरी की जाने लगी, जिसे लखनवियत या लखनऊ स्कूल का नाम दिया गया।
0: दोस्तों, बहादुर शाह जफर क्योंकि दिल्ली में ही जन्मे, पले बढ़े और जवान हुए, लाल किले ही में उनके अदबी शाही तहजीबी माहौल और संस्कारों में उनकी परवरिश की गई, इसलिए दहलवी तहजीब, ज़ुबान, मुहावरा, रहन सहन, परिवेश, जिस तरह उनके मिजाज और व्यक्तित्व में रच बस गया था और जो हालात उन्होंने देखे और महसूस किए, उनके असरात उनकी शायरी में भी जाहिर नज़र आते हैं। बहादुर शाह जफर ने अपने उस्तादों के ख्यालात का असर भी कबूल किया, परंतु वह एक फितरी शायर थे, यानी कि सच्चे शायर जिसे हम कह सकते हैं। इसलिए उनकी शायरी में उनकी शख्सियत, फिक्र, जज्बात, एहसासात और सियासी, सामाजिक और सांस्कृतिक हालात और माहौल की झलकियां भी साफ तौर पर हमें देखने को मिलती हैं।
1: जी हाँ, बहादुर शाह जफर की शायरी के अध्ययन से भली भांति अंदाजा होता है कि उन्होंने अपने उस्ताद शायर नजीर दहलवी और जौक दहलवी की शायरी के कुछ असरात जरूर कबूल किए, परंतु मिर्जा गालिब या समकालीन दूसरे शायरों का उनकी शायरी पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता। खुद जफर को भी इस बात का एहसास था, चुनांचे अपने शेर में उन्होंने कहा था, तेरा मजाक शेर जफर जानता है कौन, तेरा मजाक शेर जफर जानता है कौन, उस्ताद जौक थे तेरे वाकिफ मजाक से। श्रोताओं, बहादुर शाह जफर ने अपने कविता संग्रह यानी चार दीवान यादगार छोड़े हैं। उनके पहले दीवान में उनके उस्तादों का रंग दिखाई देता है, लेकिन बाद के दीवानों में बहादुर शाह जफर का अपना रंग स्पष्ट है। इस रंग में केवल विषयात्मक ही नहीं, भाषाई एवं अभिव्यक्ति के आधार पर भी बहादुर शाह जफर के व्यक्तित्व एवं परिवेश की छाप साफ नजर आती है। प्रख्यात विद्वान अब्दुल गफूर नस्साख ने उनकी शायरी के बारे में लिखा है, शेर निहायत शीरी और नमकीन कहते थे, चार दीवान उनकी नजर से गुजरे हैं।
0: मुंशी जगन्नाथ प्रसाद लिखते हैं कि आपका कलाम निहायत सादा, सलीस और रोज़मर्रा उर्दू का नमूना है। बहादुर शाह जफर के पहले दीवान में तकरीबन 10,000 अशार शामिल हैं। कलाम जफर में उनके दादा शाह आलम का प्रभाव दिखाई देता है। शाह आलम उर्दू, फारसी और ब्रज भाषा के शायर थे और उनके कलाम का मजमुआ नादरात शाही के नाम से उस समय प्रकाशित हुआ था जबकि बहादुर शाह जफर की आयु मात्र 23 वर्ष थी और उन्होंने 31 साल अपने दादा शाह आलम के साथ रहकर गुजारे थे। शाह आलम का कविता संग्रह नादरात शाही क्योंकि देवनागरी और उर्दू दोनों लिपि में प्रकाशित किया गया था, 8 भागों पर आधारित नादरात शाही में गजल, दोहे, कवित, गीत शामिल हैं। हर रचना का आरंभ किसी एक राग से होता है जिसमें उसे गाया जा सके।
1: जी हाँ, राग तोड़ी के लिए लिखी गई शाह आलम की गजल की जबान की सरलता, सरसता एवं सादगी से परिपूर्ण एक शेर प्रस्तुत है। अब वो नजरें दो चार होती हैं, अब वो नजरें दो चार होती हैं, तीर सी दिल के पार होती हैं। श्रोताओं, बहादुर शाह जफर की शायरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी शायरी में उनके अपने निजी हालात के साथ साथ उनके युग के हिंदुस्तान के मिजाजों, माहौल एवं हालात की झलकियां शामिल हैं। जिस तरह शाह आलम की नादरात शाही में दो हिंदुस्तानी भाषाओं को मिलाने और करीब करने की कोशिश की गई है, यही कोशिश बहादुर शाह जफर ने भी अपनी शायरी द्वारा की थी। वो यानी बहादुर शाह उर्दू में जफर और ब्रज भाषा में शौक रंग के साहित्यिक नाम से लिखते थे। शाह आलम की तरह बहादुर शाह जफर ने भी शाही किले की तहजीबी हालात के साथ साथ होली, दिवाली, सलोने के गीतों के साथ दोहे, भजन एवं ठुमरियां भी लिखी।
0: दोस्तों, हिंदी और हिंदुस्तानी परिवेश और शब्दों मुहावरों से सुसज्जित बहादुर शाह जफर के कुछ अशआर यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। ये दुनिया है औघट घाटी, पगना बहुत फैलाओ जी, ये दुनिया है औघट घाटी, पगना बहुत फैलाओ जी, इतने ही फैलाओ जिसके सुख से दुख ना पाओ जी, इस दुनिया के जितने धंधे सगरे गोरख धंधे हैं, इस दुनिया के जितने धंधे सगरे गोरख धंधे हैं, इसके फंदे जाना पड़ो तुम, इसके फंदे जाना पड़ो तुम, इनमें न मन उलझाओ जी, निकाल ए आशना हमको कि बहरे गम में हम गोते, कभी इस घाट खाते हैं कभी उस घाट खाते हैं।
1: और ये मनवा है मूरख लोभी, सब ही पर ललचाए है, जानू हो तो इस मूरख को जैसे बने समझाओ जी, कहिए न भूला इसको जफर जो सुबह का बिसरा शाम को आए, छोड़ के सगरे झगड़े अपने रब से ध्यान लगाओ।
0: क्या बात है, वाह।
1: दोस्तों, बादशाह होने के बावजूद जफर की शायरी में आम आदमी के एहसासात और ख्यालात आम जबान में आम अंदाज से भी मिल जाते हैं और उनकी शायरी का शाही अंदाज भी पढ़ने और सुनने वालों के दिलों को लुभाता और प्रभावित करके उनका हम नवा और हम ख्याल बना लेता है। जफर की शायरी, भाषा और अभिलाषा, तौर तरीके, इजहार और अभिव्यक्ति हर एतबार से समकालीन शायरों की शायरी से अपनी अलग पहचान रखती है। उनकी शायरी में खुशी और गम दोनों का समावेश होने के कारण वो निशात अंगेज भी हैं और गम अंगेज भी।
0: दोस्तों, बहादुर शाह जफर की शायरी का कमाल ये है कि गालिब, जोक, मोमिन और शाह नसीर जैसे समकालीन दिग्गज शायरों में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। बहादुर शाह जफर के सामने केवल समकालीन बड़े शायर ही नहीं थे, बल्कि उनके समक्ष मीर तकी मीर और मोहम्मद रफी सौदा की शेरी रिवायत भी थी, जिसके प्रभाव से कोई भी क्लासिकल उर्दू शायर प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। बहादुर शाह जफर की शायरी में भी दोनों रंगों की रिवायत इस तरह घुली मिली है, उनका अपना लहजा, अपना रंग भी कायम रहता है और उनके युग की आवाज भी गूंजती महसूस होती है। बहादुर शाह जफर के कलाम में विषयी रंगारंगी पाई जाती है। उन्होंने बहुत कुछ कहा और हर रंग में कहा है। उन्होंने सख्त और कठिन जमीनों में भी शेर कहकर अपनी उस्तादी दिखाई है और आसान सादा अंदाज भी इख्तियार करके कलाम में दर्द और गम और असर की धाराएं प्रवाहित की हैं। दोस्तों, यही कारण है कि उनके अशार में फनकाराना सजावट भी मिलती है और सरलता, सादगी, सरसता और हकीकत पसंदी की तह दर तह परतों का समावेश भी नजर आता है।
1: सूफी प्रथा एवं भक्ति के जज्बात भी उनकी शायरी में हैं और राग और संगीत का मिश्रण भी। अंतरंग कैफियत का बयान भी है उनकी शायरी में और जिंदगी के गहरे तजुर्बों की कड़वी तीखी हकीकतों का बखान भी एक खास लबो लहजे और अंदाज में मिलता है। शाही माहौल में रहकर की गई शायरी में जहाँ एक शाहाना वकार और शान व शौकत झलकती है और वहीं दुख भरे दिनों की उनकी शायरी में उनके दिल का दर्द और महरूमी चुभने वाला एहसास भी इस तरह अभिव्यक्त होता है कि उसे सुनने या पढ़ने वाला भी तड़प उठता है। जैसे उनकी गजल,
0: या मुझे अफसरे शाहाना बनाया होता, या मुझे अफसरे शाहाना बनाया होता, खाकसारी के लिए गर्चे बनाना था मुझे, काश खा के दरे जाना ना बनाया होता, सूफियों के जो न था लायक सोहबत तुम मुझे, सूफियों के जो न था लायक सोहबत तुम मुझे, काबिल जलसे रिंदाना बनाया होता, था जलाना ही अगर दूरी में साकी से मुझे, था जलाना ही अगर दूरी ये साकी से मुझे, तो चरागे राह में खाना बनाया होता, रोज मामूरे आए दुनिया में खराबी है जफर, रोज मामूर आए दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता।
1: वाह दोस्तों, ये गजल बादशाह बहादुर शाह की हालत जारी बयान नहीं करती, बल्कि उनकी बेबसी, बेकसी, मजबूरियों और महरूमियों, लालसाओं और इच्छाओं का इजहार भी करती है। बहादुर शाह शाह के दिल का हाल, उनकी स्थिति एवं परिस्थिति का सच्चा विवरण उनके इन शेरों से भी जाहिर होता प्रतीत होता है। सीने में एक धुआं कई बार उठ के रह गया, सीने में एक धुआं कई बार उठ के रह गया, निकला न मेरे दिल का गुबार उठ के रह गया, शम्मा जलती है पर इस तरह कहां जलती है, हड्डी हड्डी मेरी ऐ सोजे निहां जलती है, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी। दोस्तों, बहादुर शाह जफर बादशाह होते हुए लाल किले में रहते हुए भी लाचारी, बेबसी और तंग दस्ती की जिंदगी बसर कर रहे थे। हरदम उन्हें अपनी बादशाहत एवं हुकूमत के चले जाने का खतरा महसूस होता रहता था। उनका यह गम, ये फिक्र स्वाभाविक थी। वो जिन अंदेशों में मुब्तिला थे वो सच बनकर सामने आती रहे और उनको विचलित और परेशान करती रहे। इन्हीं हालात ने उन्हें न सिर्फ असहाय बना दिया बल्कि मानसिक, शारीरिक, सैन्य एवं वित्तीय एतबार से भी दुर्बल एवं कमजोर कर दिया। उनका कोई गमख्वार, हितैषी और सच्चा साथी नहीं रहा। उनके अपनों ने भी जब उनसे आंखें फेर ली तो उनका दर्द और गम उनकी शायरी में सिमट आया।
0: दोस्तों, अपने गमों को शायरी में ढाल कर वे उन्हें हल्का करते, अपना दिल बहला कर अपना समय व्यतीत करते रहे। उनकी शायरी में उनके हालात की सितम जरीफी ही प्रतिबिंबित नहीं होती, उनकी शब्दावली में भी दर्दों का असर शामिल हो गया और सयाद, कफस, कैद खाना, जंजीर, बुलबुल, उजड़ा दयार, आलम ना पायेदार आदि शब्दों के इस्तेमाल ने उनकी आवाज में दर्द मंदी, गमजदगी एवं इनफिरादियत की लय पैदा कर दी, जिसके कारण कहीं मार्मिक दयालुता और कहीं जो बागियाना अंदाज पैदा हो गया है उसका अनुमान उनके इन शेरों से हम भली भांति लगा सकते हैं। मैं वो मजनू हूँ कि जिंदा में निगहबानों को मेरी जंजीर की आवाज ने सोने न दिया। कफस के टुकड़े उड़ा दूं फड़क फड़क कर आज, कफस के टुकड़े उड़ा दूं फड़क फड़क कर आज, इरादा मेरा असीराने हम नफस यूं है। जो उसकी जान पे गुजरे है वो ही जाने हैं, जो उसकी जान पे गुजरे है वो ही जाने हैं, खुदा किसी को जहां में किसी के बस ना करे। ऐ असीरों अब ना पर में ताकते परवाज है, ऐ असीरों अब ना पर में ताकते परवाज है, क्या करोगे तुम निकल कर दाम से बैठे रहो। बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों की चाल और साजिशों से पूरे तौर पर वाकिफ हो चुके थे और ये भी समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों का ख़ास निशाना वो स्वयं और उनकी हुकूमत है। इसलिए वे ये कहने पर मजबूर हो गए कि आखिर तो फिर तेग सितम के वार हम ही पर होवेंगे, आखिर तो फिर तेग सितम के वार हम ही पर होवेंगे, और कोई गर होता है अब सीना सब पर हो लेने दो।
1: बहादुर शाह जफर इस बात से चित परिचित थे कि लाल किले और पूरी दिल्ली में अंग्रेजों ने अपने सैनिकों और जासूसों का जाल फैला रखा है। इस बात का इजहार उन्होंने अपने शेरों में इस तरह किया है, हकीकत कुछ न कुछ अपनी उधर उड़ती सी पहुंची है, हकीकत कुछ न कुछ अपनी उधर उड़ती सी पहुंची है, कहीं जासूस की उनको खबर उड़ती सी पहुंची है। इन रोजों उस गली में जासूस सा जां बजा है, इन रोजों उस गली में जासूस जा बजा है, कह दो कोई जफर से वहां आज कर न जावे। जहां में और तो डरते हैं गैर से, लेकिन जफर रहे हैं मुझे अपने आशना का खौफ। एक बदगो हो तो मैं उसके सुखन को पकड़ूं, एक बदगो हो तो मैं उसके सुखन को पकड़ूं, वहां सभी ऐसे हैं किन किन के सुखन को पकड़ूं।
0: क्या बात है।
1: और बहादुर शाह जफर की विपदा उनके इन शेरों से भी जाहिर होती है। नसीब अच्छे अगर बुलबुल के होते, नसीब अच्छे अगर बुलबुल के होते, तो क्यों पहलू में कांटे गुल के होते।
0: क्या बात है। वाह दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने अपने मखसूस हालात के सबब कई उपमाएं, कई मिसालें अपनी शायरी में ऐसी इस्तेमाल की हैं जो कि कुछ नई भी हैं और उनके हालात और दर्द दिल को भी बयां करती हैं। वो खुद को एक ऐसा बुलबुल या तस्वीर बुलबुल समझते थे जिसके लिए आज़ादी और कैद में कोई अंतर नज़र नहीं आता। लिहाजा कहते हैं, चमन दहर में वो बुलबुले तस्वीर हूँ मैं, चमन दहर में वो बुलबुले तस्वीर हूँ मैं, कि मुझे रंगे बहारा व मिजा एक सा है। ऐ सबा हूँ बुलबुले तस्वीर मुझको क्या खबर, कब बहार आए है गुलशन में खिजा कब जाए है। बहादुर शाह जफर ने अपनी और अपने देश की परिस्थितियों को गुलो बुलबुल, कैद व कफस, चमन शमा आदि अलामतों के जरिए इस तरह अपने शेरों में ढाला है। लिखते हैं कि सोहबते गुल है फकत बुलबुल से क्या बिगड़ी हुई, सोहबते गुल है फकत बुलबुल से क्या बिगड़ी हुई, आजकल सारे चमन की है हवा बिगड़ी हुई। आहे आतिशबार क्या निकले पुरदाग से, आहे आतिशबार क्या निकले पुरदाग से, हमने रोशन की है यारो ये चरागे गुल से शम्मा, खोल दे सयाद तू खिड़की कफस की शौक से, खोल दे सयाद तू खिड़की कफस की शौक से, बुलबुले बेबालों पर जालिम की धर उड़ जाएगी।
1: दोस्तों, दिली ख्वाहिश और भरसक प्रयासों से बहादुर शाह जफर अपने मुल्क को बचाना और आजाद कराना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती क्रूरता, चालाकियों और ताकत के सबब उन्हें नाकाम होने या डूब जाने का डर भी लगा रहता था। उनका ये शेर उनकी इसी कशमकश को पेश करता है। उड़ता हूँ मौजे बहरे मोहब्बत से ए जफर, उड़ता हूँ मौजे बहरे मोहब्बत से ए जफर, हाथ आते आते दामने साहिल डुबो न दे। सुनते हैं बाग में गिरी बिजली, सुनते हैं बाग में गिरी बिजली, जल गया हूं ना आशियां अपना। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की शायरी उनके त्याग, तपस्या, सब्र, देशभक्ति और उनके समय की हिंदुस्तानी तहजीब, सियासी, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा है, जिसके अध्ययन से आने वाली नस्लें तब के हालात और इतिहास और कुर्बानियों से अवगत ही नहीं बल्कि प्रेरित और गौरवान्वित भी होंगी और होती रहेंगी। तो श्रोताओं, यह था आज का हमारे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में हमने महान शब्द शिल्पी बहादुर शाह जफर के बारे में जाना। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन प्रोफेसर मोहम्मद नोमान खान, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपकी रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
0: मैंने यानी आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया ने।
1: अगली बार मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्दों के शिल्पकार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वामी विवेकानंद भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। सन 1898 की जुलाई में स्वामी जी नीलांबर बाबू के उद्यान में स्थित बेलूड़ मठ में निवास कर रहे थे। एक दिन संध्या समय अपने शिष्यों सहित ध्यान समाप्त कर स्वामी जी कमरे में आकर बैठ गए। बाहर जोरों की वर्षा हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। स्वामी जी ने सब दरवाजे बंद कर लिए और तानपुरे पर एक गीत गाया।

0: गीत समाप्त होने पर संगीत पर चर्चा छिड़ गई। स्वामी शिवानंद जी ने पूछा, पाश्चात्य संगीत के संबंध में आपके क्या विचार हैं?
1: पाश्चात्य संगीत बहुत उत्कृष्ट है, उसमें गीत माधुरी लय उस चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी है जो हमारे संगीत में नहीं है। ये और बात है कि हमारे अनअभ्यस्त कानों को पाश्चात्य संगीत रुचिकर प्रतीत नहीं होता और हम ये सोचते हैं कि वे सियारों के समान चिल्लाते हैं। पहले मेरा भी यही ख्याल था, पर जब मैंने उनके संगीत को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया और उस शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका।
2: परंतु हम भारतीयों को पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगता, शायद हम उसे समझते नहीं, इसलिए।
1: सभी कलाओं का यही हाल होता है। किसी उत्कृष्ट चित्र को देखकर हम ये नहीं समझ सकते कि उसका सौंदर्य कहाँ छिपा है। जब तक चित्रकला में निपुणता न प्राप्त हो तब तक किसी कलाकृति का मर्म समझना कठिन है। हमारा संगीत केवल कीर्तन और ध्रुपद में ही शुद्ध रूप में जीवित है, शेष सब इस्लामी संगीत कला के अनुकरण से दूषित हो गया है।
2: हमें विस्तार पूर्वक समझाइए स्वामी जी।
1: प्रकृति का अनुकरण कर चित्रकला चाहे जितनी कलामय बनाई जा सकती है, इसी प्रकार संगीत में भी शास्त्र अनुकरण कर जितनी चाहे उतनी दक्षता प्रदर्शित की जा सकती है और ऐसा संगीत कानों को भी प्रिय लगेगा। भारत में आकर मुस्लिमों ने यहाँ की राग रागिनियों को अपनाया तो अवश्य, पर टप्पा गीतों पर उन्होंने अपने संगीत की इतनी गहरी छाप मारी कि यहाँ का संगीत ही नष्ट हो गया।
3: ऐसा कैसे महाराज, टप्पा तो सबको अच्छा लगता है।
1: हाँ, कुछ लोगों को झिंगुरों की झनकार भी अच्छी लगती है। संथाल भी अपने संगीत को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सातों सुरों के भिन्न भिन्न प्रकार के संयोगों को ही भिन्न भिन्न राग रागिनियों का नाम दिया गया है, पर टप्पा में उल्टी ही बात है। ये तो एक राग से दूसरे राग की ओर दौड़ है। एक नई धुन बनाई जा सकती है, फिर आलाप में आवाज ऊंची उठाकर उसमें कंपन लाया जाता है। भला इसमें राग कैसे शुद्ध और पूर्ण बना रह सकता है?
4: उनकी बातें सबको समझ में नहीं आई क्योंकि वे सब संगीतज्ञ नहीं थे। ये समझकर स्वामी जी ने उन्हें समझाया,
1: यदि केवल प्रभावोत्पादन के लिए ही लघु रूप आलापों का इतना प्रचुर उपयोग किया जाए तो संगीत का अर्थ तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब से टप्पा का प्रचार हुआ तब से भाव व्यक्त करने के लिए गीतों का गाया जाना तो बिल्कुल बंद हो गया। अब रंगमंच की प्रगति के साथ शुद्ध संगीत का शनै शनै जीर्णोद्धार होने लगा है, पर अब भी राग रागनियों की अवहेलना ही हो रही है। जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं उन्हें तो टप्पा कर्कशी लगता है, पर हमारे संगीत में सुरों का आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है। फ्रांस वालों ने हमारे संगीत के इस गुण को पहचाना है और अपने संगीत में अपनाने का प्रयत्न किया है। उनको देखकर यूरोप भर में अनुकरण होने लगा।
3: महाराज, उनका संगीत तो अधिकतर वीर रस जागृत करने वाला है और हमारे संगीत में इसका नितांत अभाव जान पड़ता है।
1: नहीं, हमारे संगीत में ये विशेषता है। वीर रस के संगीत में भी लय की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे संगीत में लय का अभाव है, इसलिए हमारे वीर रस का संगीत इतना प्रबल नहीं है। पाश्चात्यों का संगीत बहुत अधिक उन्नत है। उनके संगीत में करुण और वीर रस दोनों की ही प्रचुरता है। हमारे तुम्बे से बने प्राचीन वाद्यों में कोई प्रगति ही नहीं हुई।
3: कौन कौन से राग वीर रस प्रधान है?
1: हर एक राग वीर रस प्रधान बन सकता है यदि उनमें लय हो और वाद्य भी तदनुकूल लिए जाएं। कुछ रागिनियां भी कुछ वीर रस प्रधान बन सकती हैं।
0: भोजन का समय हो गया था, इसीलिए चर्चा समाप्त कर दी गई। तदुपरांत स्वामी जी कलकत्ते से आए हुए अतिथियों के सोने की व्यवस्था के बारे में पूछताछ कर अपने शयन कक्ष में आराम करने लगे।
4: स्वामी जी कितने अच्छे संगीतज्ञ थे, उसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। शायद इस घटना का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, पर यहाँ संगीत की बात चली तो और एक बार उस घटना के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं।
0: परिव्राजक के रूप में अपने भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की एकनाथ पंडित नामक एक वरिष्ठ संगीतज्ञ के साथ मुलाकात हुई, जो एक ध्रुपद गायक थे। स्वामी जी ने उनका संगीत सुनने की इच्छा व्यक्त की। एकनाथ पंडित के गाने के साथ स्वामी जी मृदंग पर संगत करने लगे। स्वामी जी के इस मृदंग वादन से गायक और श्रोता पूर्णतः संतुष्ट हुए।
4: इस कार्यक्रम के पश्चात होने वाले वार्तालाप से पता चला कि स्वामी जी एक अच्छे गायक भी हैं। अतः उन लोगों ने स्वामी जी से गाने का अनुरोध किया। स्वामी जी तानपुरा उठाकर ध्रुपद का आलाप लेने लगे। फिर जब वे गीत के लय पर आए तो कोई भी मृदंग पर उनकी संगत नहीं कर सका।
0: सहसा ही उन्होंने तानपुरा एकनाथ पंडित के हाथ में सौंपते हुए मृदंग उठा लिया और स्वयं ही अपनी संगत करने लगे। इस तरह सबको आश्चर्य में डालकर स्वामी जी ने दोनों भूमिकाएं निभाई। इस अद्भुत घटना पर विस्मित होकर पंडित जी कह उठे, स्वामी जी आप केवल गायक नहीं नायक भी हैं।
4: नायक की उपाधि एक ऐसे संगीतज्ञ को दी जाती है जिसमें सफल प्रदर्शन, संगीत रचना की क्षमता, संगीत शास्त्र का ज्ञान और श्रोताओं को अभिभूत करने की प्रतिभा हो। जिन लोगों को संगीत का थोड़ा ज्ञान है वे इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे कि ध्रुपद गायन जिसमें कि षट प्राण और षट संगत लगते हैं के साथ मृदंग पर स्वयं ही संगत कर पाना प्रायः असंभव सा है। इन दोनों को एक साथ अकेले ही सफलतापूर्वक कर दिखाना एक अति मानवीय कार्य है।
0: स्वामी जी ने सुव्यवस्थित ढंग से ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन और टप्पा का अध्ययन किया था। टप्पा के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। विभिन्न शिक्षकों से उन्होंने मृदंग, तबला और सितार भी सीखा। वेणी उस्ताद वेणी माधव अधिकारी और उस्ताद अहमद खां से उन्होंने ध्रुपद व ख्याल सीखा था।
4: ब्रह्म समाज के एक सदस्य श्री काशी घोषाल से उन्होंने इसराज एवं मृदंग सीखा। उनके समकालीन बंगाल के संगीतज्ञों में प्रमुख थे रविंद्रनाथ ठाकुर, त्रैलोक्यनाथ सान्याल और जितेंद्रनाथ ठाकुर। कहते हैं अपनी संगीत शिक्षा के दिनों में स्वामी जी नियमित रूप से कठोर अभ्यास किया करते थे।
0: स्वामी जी एक रचनाकार भी थे। परवर्ती काल में उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिंदी में अनेक रचनाएं की और उन्हें विभिन्न शास्त्रीय रागों एवं तालों के साथ समायोजित किया। उनमें कुछ का विवरण निम्नलिखित है। पहला, खंडन भव बंधन, राग यमन, ताल चौताल। ये रामकृष्ण संघ के सभी केंद्रों में गाई जाने वाली दैनिक प्रार्थना है। दूसरा, एक रूप अरूप नाम वर्ण, राग बड़ा हंस सारंग, ताल चौताल। तीसरा, ना ही सूर्य ना ही ज्योति, राग बागेश्री, ताल अड़ा या इकवी। चौथा, मुझे वारी बनवारी सैया, राग ठुमरी, ताल कहरवा।
4: उनकी तबले की ताल पर भी अनेक रचनाएं हैं। यदि 39 वर्ष की अल्पायु में देह त्याग ना किया होता तो संगीत जगत संभवतः उनकी और भी रचनाएं पाकर उपकृत होता।
0: संगीत के किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में ध्रुपद के प्रति स्वामी जी का बड़ा सम्मान का भाव था। वे कहते,
1: जिन सब गीत वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भाव समूह उद्दीप्त हो जाते हैं उन सब को अब थोड़े दिन के लिए बंद रखना होगा। ख्याल टप्पा बंद करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छंदों के उच्चारणों से देश में प्राण संचार कर देना होगा।
4: परंतु संगीत के आदर्श के बारे में स्वामी जी ने कहा था,
1: ध्रुपद और ख्याल आदि में एक विज्ञान है, किंतु कीर्तन अर्थात माथुर और विरह तथा ऐसी अन्य रचनाओं में ही सच्चा संगीत है, क्योंकि वहां भाव है, भाव ही आत्मा है, प्रत्येक वस्तु का रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाव मात्र ही संगीत है, पर ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी ओर भाव विहीन परंतु केवल व्याकरण शास्त्र पर आधारित शब्दों की कसरत भी संगीत नहीं है।
4: स्वामी जी के गुणों से एक और गुणी व्यक्ति भी बहुत प्रभावित हुए थे। वे थे फ्रांस के रोमारोला। उन्होंने लिखा है,
5: स्वामी जी के शब्द मात्र महान संगीत है। वे शब्द तो जैसे बिथोविन शैली के संगीत के टुकड़े हैं, हिंडेल के संवेद गान के छंद प्रवाह के भांति उनमें उद्दीपक लय निहित है। उनकी वाणी सुनते ही शरीर में बिजली सी कौन जाती, उनके मुख से निकली वाणी में अनायासी आवेग उत्पन्न हो जाता है।
0: स्वामी जी का मत था कि सिर्फ शुद्ध ताल और स्वर के साथ गाना गाने को यथार्थ संगीत नहीं कहा जा सकता। लोक गीतों की मधुरता, शास्त्रीय संगीत का विज्ञान और कीर्तन का भाव, इन गीतों के मेल से ही आदर्श संगीत की सृष्टि होती है। उन्होंने कहा था,
1: युगों पूर्व भारत में संगीत को पूर्ण सप्त स्वरों तक विकसित किया गया था, यहां तक कि अर्ध एवं चतुर्थांश स्वर तक भी विकसित हुए थे। भारत ने संगीत में और नाटक तथा स्थापत्य कला में भी नेतृत्व किया। अब जो कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ नकल है।
4: टप्पा के बारे में उन्होंने कहा था,
1: जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं, उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है। टप्पा को नाक से गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर में दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत नहीं हो सकता। क्या तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक स्वर के पीछे दूसरा स्वर इतनी द्रुत गति से तेजी से आता है तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं होती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन पैदा हो जाता है।
0: पाश्चात्य संगीत में गहराई तक बैठने के बाद स्वामी जी ने उसके बारे में उच्च धारणा बना ली थी। उन्होंने कहा,
1: जब मैंने पाश्चात्य संगीत को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया और उस शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है।
4: उन्होंने आगे और भी कहा,
1: हमारे संगीत में आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है, उसी का अनुसरण आज सारा विश्व कर रहा है।
0: स्वामी जी सिर्फ सिद्ध संगीतज्ञ ही नहीं, बहुत अच्छे कवि भी थे। उनका काव्य जीवन और दर्शन का सत्य है।
4: विवेकानंद के काव्य को विषय और शैली की दृष्टि से दो भागों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग की कविताओं में सत्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष शैली ली गई है। इसमें कवि विवेकानंद का वो रहस्यवादी रूप प्रकट है जो मात्र रहस्य में ही विराम नहीं पाता, बल्कि उसकी पूर्णाभिव्यक्ति की चेतना से भी भरा है। उनकी कविताएं रहस्यमय सत्य की नहीं, सत्य की रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति हैं। हम इस वर्ग में कवि की समाधि, सखा के प्रति, गाता हूँ गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को, नाचे उस पर श्यामा, काली माता और सन्यासी का गीत आदि कविताओं को रख सकते हैं।
0: सत्य के सगुण स्वरूप पर आधारित कविताएं दूसरे वर्ग में रखी जाएंगी। इन कविताओं में ईश्वर के सगुण रूप पर निवेदित भावनाओं के समर्थन के साथ ही मानवीय मूल्य के विविध आयामों की रचनाएं हैं।
4: विवेकानंद का काव्य समाधि की सृष्टि है। समाधि चरमावस्था का ही दूसरा नाम है। ये वो अवस्था है जिसमें मानव व्यक्तित्व पूर्णतः एकात्म प्राप्त कर लेता है। उसकी अनेक मुखी प्रवृत्तियां अपनी विभेद खोकर एक अपूर्व एकात्म का अनुभव करती हैं। उस अवस्था में सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सव्योम में ये विश्व नजर आता है।
0: जहां मन के विभिन्न भाव अपने मिथ्यात्व का दर्शन कराने लगती हैं, जहां अहंकार की उद्दीप्त धारा में दृश्यमान विश्व विलीन होने लगता है, और अंत में जहां अंधकार भी एक व्यापक पूर्णता में लय प्राप्त करता है, वहां कवि विवेकानंद उपमा देते हैं, बंद वो धारा हुई, शून्य में मिला है शून्य, अवाड़ गमन सगोरचम, वो जाने जो ज्ञाता है।
4: कवि विवेकानंद हमसे कहते हैं,
1: तुम प्रेम की यज्ञ वेदी में अपनी स्वार्थ परता एवं मलिनता की आहुति दे दो। स्मरण रखो, कि तुम्हारा भिक्षुक हृदय सदैव से सुख वर्जित रहा है। अपने हृदय की प्रेम राशि का वितरण तुम बिना प्रतिदान की आकांक्षा किए मुक्त हस्त से करो, क्योंकि ब्रह्मा और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार। एक प्रेममय प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मन वार। बहुरूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहां है ईश। व्यर्थ खोज ये जीव प्रेम की सेवा ही पाते जगदीश।
0: उनके गीत प्रकृति और पुरुष या शक्ति और शिव रूपी मूल तत्व के प्रति ही निवेदित है। वे ही कवि के सर्वस्व है। कवि ने अपनी आंतरिक घनिष्ठता का वर्णन इन भावनाओं में किया है। मात्र तुम ही हो मेरे, तुम ही प्राण बंधु हो। होता है आभास कि तुम मैं और मैं तुम हूं। तुम वाणी हो, तुम ही कंठ में बसे हुए हो। वीणापति शारदा तुम ही, मैं माध्यम हूं। है प्रवाह उद्याम वेगमय और चिरंतन। बह बह जाते थाह न पाते हैं मानवगण। ध्वनि गांभीर्य तुम्हारा सदृश जलधि का गर्जन। शेखर चंद्र तुम्हारी वाणी के आवर्तन।
4: विवेकानंद लोगों से काली माता की भयंकारी रूप को संतान भाव से पूजने का आग्रह करते। वे कहते हैं,
1: हे सत्य स्वरूपा माँ, तू ही इस ब्रह्मांड का सत्याधार है। लोग तुझसे प्रेम का ढोंग करते हैं, पर तेरी मूर्ति का साक्षात्कार करने का साहस उनमें कहाँ। माँ, तेरा दिगंबरा रूप देखकर तो संसारी लोगों के प्राण सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं, और वे तुझे असुर विजयिनी दयामयी इत्यादि गुणों से युक्त कर अपने विक्षुब्ध मन के भय को शांत करने का प्रयास करते हैं।
4: हम विवेकानंद को राग का कवि नहीं कह सकते, बुद्धि का कवि भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार हम ये भी नहीं कह सकते कि विवेकानंद की कविता रागमय नहीं है, बुद्धिमय नहीं है। हमें उनकी प्रत्येक पंक्ति से एक अपूर्व अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति जो एक साथ राग और बुद्धि दोनों को अभिभूत कर देती है। हृदय और मेधा दोनों को एक साथ चमत्कृत करती है। राग और बुद्धि प्रकृत काव्य का मूलभूत समन्वय गुण है, और विवेकानंद का काव्य आदि से अंत तक इस समन्वय की ही अभिव्यक्ति है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम भी उपस्थित होंगे, तब तक ले आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।